एफएम पे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के 2रे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। चिंतन। भजन ध्यान पाठ करने से विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है और सफूर्ति आती है। वैसे ही नित्य भजन करने से, सिमरन करने से ये आंतरिक स्नान होता है, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और मानसिक प्रेरणा मिलती है।

मानव जीवन में सत्य और असत्य दोनों का संग रहता है। शरीर, संसार और भोगों का संग ही असत्य का संग है, और अनंत जीवन तथा आनंद की लालसा सत्य का संग है। इसलिए गोपी भाव प्राप्त करने के लिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का तथा उनसे संबंध रखने वाले समस्त भोगों का संग विवेक द्वारा छोड़ना पड़ता है। उसका त्याग सत्संग से हो सकता है।

अपने अवगुणों का त्याग ही गुणों का संग है, भोगों की चाह रखते हुए गुणों का उदय और दोषों का अभाव नहीं होता। चित्त का सर्वथा शुद्ध हो जाना और सब प्रकार के असत्य का संग छूट जाना ही प्रभु के ब्रज में प्रवेश होता है।

परमपिता परमात्मा का पावन नाम सभी कल्याणों को देने वाला है तथा सभी अमंगलों को दूर करने वाला होता है। जिस प्रकार प्रभु का नाम, रूप, लीला और धाम परम मंगलमय है, वैसे ही उनकी मधुमयी वाणी भी परम कल्याणकारक होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। और आज के सुप्रभात कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा विश्व टूना दिवस। सत्यजीत रे जयंती पर जानकारी, रमणीक स्थल चितकुल पर बातचीत जानकारी और पर्यावरण में हम बात करेंगे कमल पुष्प पर।

मिनट पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग। एक ही फिल्म से कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनवाए जाएंगे 8:30 पर सुबह, और सुबह 9 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

दिन में 12 बजे आप सुनेंगे सैनिकों के लिए फिल्म संगीत, 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर परिवार प्रसारित किया जाएगा। युवा मंच कार्यक्रम का समय रहता है शाम 5:30 पर।

किसान व बागवान भाई बहनों के लिए मौजा ग्राहितियाँ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर और 7:10 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:18 पर शाम 6 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम हिम दर्शन आकाशवाणी के शिमला केंद्र से ही रिले किया जाएगा।

आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। छह बजकर 55 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने LPG के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल VK सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling is being held at 11 polling stations of Mogarhat Paschim Assembly Constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly Constituency in the state. Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the Vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased by 60%. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, which came into force 4 years ago, has created a transformational opportunity for Indian farmers, MSMEs and other businesses. In a social media post, Mr. Goyal noted that bilateral merchandise ties between India and UAE have grown strongly, crossing $100 billion, with services trade also rising steadily and opening new markets and greater value. The minister also highlighted that expansion across key sectors like gems and jewellery, engineering goods, electronics and agriculture is delivering tangible gains. He underlined that the foreign direct investment inflows from the UAE and India's overseas investments further reflect the deepening economic linkages of the two nations. Field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. US President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations, but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 7 wickets at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur. Batting first, Rajasthan Royals posted 225 for 6 in 20 overs, with skipper Riyan Parag scoring 90. Today, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at M.H. Chidambaram Stadium, Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सुप्रभात कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्व।

तो श्रोतो, स्वागत है आपका सुप्रभात कार्यक्रम में एक बार फिर से। सबसे पहले बात करेंगे आज विशेष पर, क्या कुछ खास रहा आज के दिन भारत के इतिहास में। तो आपको बता दें कि भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका जो पंडवानी गायक के गायन के लिए जानी जाती हैं, दुर्ग क्षेत्र के पंडवानी गायिका उषा बारले का जन्म आज ही के दिन 2 मई 1968 को हुआ था। दुर्ग क्षेत्र की पंडवानी गायिका उषा बारले को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई से उन्हें पंडवानी सिखाई गई थी। पंडवानी का प्रदर्शन भारत के बाहर लंदन और न्यूयॉर्क जैसे स्थानों पर भी उषा बारले द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उषा बारले को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया था। इससे पहले 2006 में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर उन्हें नई दिल्ली में प्रथम स्थान मिला था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मानित किया गया था उन्हें। छत्तीसगढ़ शासन ने 2007 में भी सम्मान

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हम बात करेंगे विश्व टूना दिवस पर। हर साल ये दिन 2 मई को मनाया जाता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व और इसे सतत संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। ये दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। ये टूना के आर्थिक मूल्य, खाद्य सुरक्षा और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य है टूना मछली की लुप्त प्राय होती प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाना, अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकना और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। टूना मछली प्रोटीन, ओमेगा 3 और खनिज पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टूना और उससे संबंधित प्रजातियां वैश्विक मत्स्य पालन मूल्य का लगभग 20% हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सत्यजीत राय के जीवन पर। आज सत्यजीत राय का जन्म जयंती है। 2 मई 1921 में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम सत्यजीत राय, सत्यजीत रे और शातोजित रॉय के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विश्व की महानतम फिल्म हस्तियों में से एक थे, जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। सत्यजीत राय प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की है। सत्यजीत राय फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही करते थे, जिनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल हैं। फिल्मकार के अलावा वे कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत राय कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिले हैं। विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न 1992 के अतिरिक्त पद्मश्री 1958, पद्मभूषण 1965, पद्म विभूषण 1976 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 से सम्मानित हैं। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया। इसके अलावा उन्होंने और उनके काम ने कुल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं गीत।

एक बार फिर से स्वागत है आपका सुप्रभात कार्यक्रम में। अब हम बात करेंगे पर्यटक स्थल चितकुल के बारे में। चितकुल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला घाटी में बसा भारत का अंतिम गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वास्पा नदी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से 3,450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान देवदार के जंगलों, सेब के बगीचों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। ये पुराने भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित आखिरी बसा हुआ गांव है, जो भारत चीन सीमा के निकट है। वास्पा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित यहाँ की सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करती है। इस गांव में देवी मठी के तीन प्रमुख मंदिर हैं, जो लगभग 500 साल पुराने माने जाते हैं और अखरोट की लकड़ी से बने हुए हैं। यहां पर्यटक ट्रेकिंग, नदी के किनारे आराम करने और स्थानीय संस्कृति को अनुभव कर सकते हैं। ये किन्नर कैलाश परिक्रमा की अंतिम बिंदु है। यहाँ भारत के सबसे ऊंचे हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे का अनुभव लिया जा सकता है। मई से अक्टूबर के बीच का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने के लिए शिमला से चितकुल लगभग 247 किलोमीटर दूर है, जहाँ से टैक्सी या बस द्वारा करछम के रास्ते वहाँ पहुँचा जा सकता है। ये स्थान अपनी सादगी और निर्जन सुंदरता के कारण हिडन जेम माना जाता है।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पर्यावरण में आज हम बात करेंगे कमल पुष्प पर। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है जो पवित्रता, सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह जलीय पौधा कीचड़ में उगकर भी शानदार ढंग से खिलता है, जिसके गुलाबी और सफेद फूल मुख्य रूप में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है और ये लक्ष्मी जी का आसन माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से नीलुम्बो न्यूसिफेरा के रूप में जाना जाने वाला ये बारहमासी जलीय पौधा है। ये ज्ञान, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तालाबों और झीलों के कीचड़ में ये उगता है। कमल में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा ये तनाव और नींद की समस्या को दूर करने में भी सहायक होता है। कमल के पौधे के सभी भाग खाद्य योग्य होते हैं। भारतीय संस्कृति में कमल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल भारतीय राष्ट्रीय पुष्प है बल्कि हिंदू धर्म में विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान और भाग्य को दर्शाता है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के रूपक के रूप में माना जाता है।

0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Why not make a bold move this month?
0: Upgrade to the bold Baleno, a drive that feels bolder, smoother and makes every journey special.
1: Presenting your Baleno, the perfect combo of style, technology and safety.
0: EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: And yes, it's available at an effective price of 5.64 lakhs.
0: Stock limited. Hurry, get 360 degree camera, head-up display, Smart Play Pro Plus, 6 airbags jaise kai features.
1: Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa. अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
3: तो इंतजार कैसा? 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुभ प्याग, राजकुमार की आवाज में। अब हम आप

राजकुमार और साथियों की आवाज़ों में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का शुभ प्याग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC Under-17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
3: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 RBI कार्यालयों में उपलब्ध है। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग चे लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है पर जल दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. U.S. President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
8: Among these, 11 are in Poshchim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallu Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision on recruitment of counting personnel. In response, the party rushed to the Supreme Court. Despite today being a holiday, the apex court has constituted this special bench to ensure the matter is heard without delay.
9: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
7: Field operations for house listing and housing census under phase 1 of census 2027 have commenced from yesterday in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This follows the completion of the notified 15-day self-enumeration period in these states and union territories. More on this from our correspondent.
10: Ministry of Home Affairs said that the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will undertake house-to-house visits for data collection. Meanwhile, self-enumeration facility under Census 2027 has commenced in Municipal Corporation of Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand yesterday. The online facility will remain available till 50th of this month, after which corresponding house-to-house house listing operations in these states and UTs will be conducted between May 16th to June 14th. The self-enumeration facility, introduced for the first time in Census 2027, has received an encouraging response from the public. As part of the digital approach adopted for Census 2027, so far around 82 lakh households have successfully availed the facility through the official portal sc.census.gov.in. The initiative marks a significant milestone in digitizing census operations and has been widely appreciated for offering flexibility, convenience and ease of participation. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the Vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased by 60%.
11: We diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. We started procuring LPG, that is cylinder gas, from US and Norway, Algeria, apart from the Middle East. India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries, and we increased our domestic production by 60%. We are incentivizing the movement to natural gas. Operation Urja Suraksha was a coordinated response across companies, ministries, state governments and international suppliers. Maximum vessels of India carrying LPG came out of the Hormuz.
7: The Reserve Bank of India has said that 98.47% of the 2,000 rupees denomination bank notes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupees notes from circulation on May 19, 2023, as part of its currency management exercise. The RBI, however, clarified that despite their withdrawal and return, the 2,000 rupees bank notes continue to remain legal tender. The Atomic Energy Regulatory Body has issued permission for major equipment erection at Kudankulam Nuclear Power Project Units 5 and 6. The permission granted allows the Nuclear Power Corporation of India Limited to undertake installation of major equipment of the plant, including reactor pressure vessel, steam generators, coolant pumps. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. U.S. President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations, but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. He also described Iran's leadership as very disjointed, signaling continued mistrust between the two sides.
12: You cannot give Iran a nuclear weapon because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. We've taken their air force, is non-existent, it's gone. Their navy, they had the strongest navy by far in the Middle East many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader.
7: The U.S. blockade in the Gulf of Oman and maritime routes has been costing Iran nearly $4.8 billion in oil revenue, according to a report by Axios citing Pentagon. Highlighting the report, Sean Parnell, Assistant to the Secretary of War for Public Affairs, said the U.S. operation is intended to maintain sustained economic pressure on Tehran. The enforcement actions targeting sanctioned Iranian shipping have reduced Iran's energy exports amid heightened tensions near the Strait of Hormuz, a key global oil choke point. U.S. officials said the operation aims to continue economic pressure on Iran and disrupt funding for its regional activities. Ministry of Panchayati Raj will organize an outreach workshop on Atmanirbhar Panchayat initiative in Hyderabad today. The outreach workshop will introduce participants to the vision, objectives and operational framework of the Atmanirbhar Panchayat program, an initiative of the Ministry of Panchayati Raj under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. IMD has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Orissa and coastal Andhra Pradesh. The weather agency has said that coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka and Tamil Nadu are likely to experience hot and humid weather conditions today. The Meteorological Department has said Jammu and Kashmir is likely to witness generally cloudy sky with spells of light to moderate rainfall and thundershowers next 3 days, accompanied by gusty winds of 40 to 50 kilometers per hour at a few locations. The weather agency also issued an advisory asking farmers to suspend farm operations during the period in view of the expected rain and gusty winds. The Vande Bharat Express has officially commenced its regular service between Jammu and Kashmir Valley today. The train departed at 6:20 a.m. from Jammu, marking a significant step in enhancing rail connectivity in the region. The service was inaugurated on Thursday by Railway Minister Ashwani Vaishnaw, who flagged off the train and described it as a major milestone for Jammu and Kashmir. In badminton, Indian men's badminton team will face France in semi-finals of the Thomas Cup 2026 at Horsens in Denmark today. India advanced to the semi-finals of the tournament after dominant 3-0 win over Chinese Taipei in the quarter-finals. Lakshya Sen gave India the perfect start, saving two match points to beat world number 6 Shou Tianxin 18-21, 22-20, 21-17 in a thrilling opener. In football, India will mark their first appearance at the AFC Under-17 Women's Asian Cup since 2005, ending a 21-year wait at this level at the Under-17 national team kick off their campaign against Australia in China today. The match is scheduled to start at 5 p.m. Indian Standard Time. It is another landmark moment for Indian women's football. In tennis, in the women's singles final, Mira Andreeva will face Ukraine's Marta Kostyuk at the Madrid Open today. The ninth seed Mira Andreeva defeated US's Hailey Babstay in the semi-finals on last Thursday, sealing her spot with a 6-4, 7-6 victory in the Spanish capital. Whereas Marta Kostyuk defeated Anteza Potapova by 6-2, 1-6, 6-1 victory, sent herself into a first WTA 1000 final in Madrid. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 7 wickets at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur last night. Batting first, Rajasthan Royals posted 225 for 6 in 20 overs, with skipper Riyan Parag scoring 90. In reply, Delhi Capitals overhauled the target for the loss of 3 wickets in 19.1 overs, riding on KL Rahul's 75 off 40 balls. He was named player of the match. And now for a look at today's newspapers. It's over to Shakun Chopra.
13: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with surge in fuel costs. The Pioneer notes, steep LPG price hike to hurt all sections. The Indian Express writes, polls over, energy prices soaring due to West Asia crisis, fuel rate hike on table. Talking about the April highs, GST revenue hits record rupees 2.43 lakh crore in April, writes The Hindu. Lockdown in strong room areas after TMC-BJP clash, writes the Times of India. The Hindustan Times under the caption, Labour Day, heat awareness, the cost of labour in a simmering city, carries a picture of workers creating murals, depicting problems they face while working in the heat. The Asian Age mentions, Trump says Iran dying to make a deal, rules out fresh airstrikes. The Economic Times on its editorial page talks of a cobot experiment in Japan. Travelers with poor experience of airport baggage handling will be particularly interested in Japan Airlines experiment with giving jobs to robot at Tokyo's Haneda Airport. Trials beginning this month will use Unitree's humanoid robots to move baggage, cargo and equipment across the airport. Depending on how they perform, their role could be widened to other ground handling services like cleaning aircraft cabins. If the experiment is successful, it will offer a solution to Japan's aging population and a surge in tourism. And finally, the Financial Express takes note, placement season seeing higher number of new age companies as traditional tech firms scale down recruitment. Startups cushion IT hiring slow down. And with that, it's back to you, Sarabjit.
7: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Repolling begins in 15 polling stations of two assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Why not make a bold move this month?
0: Upgrade to the Bold Baleno, a drive that feels bolder, smoother, and makes every journey special.
1: Presenting your Baleno, the perfect combo of style, technology, and safety.
0: EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: And yes, it's available at an effective price of 5.64 lakhs.
0: Stock limited. Hurry, get 360-degree camera, head-up display, Smart Play Pro Plus, 6 airbags jaise kai features.
1: Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
4: तो इंतजार कैसा? 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
1: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
1: Yes, ₹6.70 lakh, valid till 30th April only.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Why not make a bold move this month?
0: Upgrade to the Bold Baleno, a drive that feels bolder, smoother, and makes every journey special.
1: Presenting your Baleno, the perfect combo of style, technology, and safety.
0: EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: And yes, it's available at an effective price of 5.64 lakhs.
0: Stock limited. Hurry, get 360-degree camera, head-up display, Smart Play Pro Plus, 6 airbags jaise kai features.
1: Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
5: श्रोताओ, एक ही फिल्म में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नमस्ते लंदन फिल्म के कुछ गीत। नमस्ते लंदन 2007 23 मार्च को रिलीज हुई थी। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्देशित एक लोकप्रिय रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिकाओं में हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म का एक और गीत।

एक ही फिल्म में आज आप सुन रहे हैं फिल्म नमस्ते लंदन के गीत। 23 मार्च 2007 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे हिमेश रेशमिया ने दिया है। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ के साथ ऋषि कपूर, जावेद शेख, उपेन पटेल और क्लाइव स्टैनर अहम भूमिकाओं में हैं। तो आइए सुनते हैं जुबिन गर्ग और अलीशा चिनाई की आवाज़ में नमस्ते लंदन फिल्म का एक और गीत।

एक ही फिल्म में आज आप सुन रहे थे फिल्म नमस्ते लंदन के कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम गीतांजलि का। तो गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। गीतांजलि कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

बॉबी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म से लिया गया है ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रायाधन फिल्म।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा की कीमतें रखी स्थिर। प्रदेश में 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत ऊना जिले में प्राकृतिक खेती को मिल रहा बढ़ावा। करीब 14,000 से ज्यादा किसान योजना से जुड़े। केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2026 किए लागू। और प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ। मौसम विभाग ने 3 व 4 मई को कुछ स्थानों में बारिश व ओलावृष्टि की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। तीसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% LPG का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इससे पहले अब तक इस चुनाव के लिए कुल 690 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। 4 मई को इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई को इच्छुक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनाव के लिए 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इनमें 4 नगर निगम सोलन, पालमपुर, मंडी, धर्मशाला और 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन निकायों में कुल 360,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 180,963 पुरुष और 179,882 महिला और 14 अन्य मतदाता हैं। चुनाव के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन यानी 17 मई को ही कर ली जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। शहरी निकायों के चुनाव में 1,808 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने कल 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इनमें IAS, IFS, HAS और HPFS अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रसायन मुक्त स्वदेशी गाय आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मिशन के माध्यम से 2 साल तक प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ऊना जिले में लगभग 15,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़कर गैर रासायनिक और कम लागत वाली खेती को अपना रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसान कम लागत में कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों रहित खेती कर रहे हैं। इससे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं और पर्यावरण को और दूषित होने से भी बचाया जा रहा है। जिले के 14,240 किसानों का प्राकृतिक खेती से जुड़ाव हो चुका है, जिन्हें समय समय पर तकनीकी जानकारी के साथ साथ जैविक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्राकृतिक उत्पादों से किसानों को अधिक दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। इन किसानों का कहना है कि प्राकृतिक खेती अपनाकर वे लोगों को जानलेवा बीमारियों से दूर रखने के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर पा रहे हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: मंडी जिला की 577 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि मतदान 26, 28 और 30 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। नामांकन प्रक्रिया 7, 8 और 11 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। चुनाव 3 चरणों में जिले के विभिन्न विकास खंडों की पंचायतों में कराए जाएंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए कल नागरिकता संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के इस फैसले से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI आवेदन प्रक्रिया से लेकर पासपोर्ट नियमों तक कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब OCI कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदकों को अब फिजिकल OCI कार्ड के साथ साथ OCI ई का भी विकल्प मिलेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। इन नए नियमों के लागू होने से प्रवासी भारतीयों और OCI कार्ड धारकों के लिए प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि नाबालिगों के पासपोर्ट संबंधी सख्ती से नागरिकता से जुड़े विवादों और दुरुपयोग की संभावनाएं कम होंगी। ये बदलाव भारत की नागरिकता प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त किरण भड़ाना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विकासखंड लाहौल में मतदान 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: पहले चरण में 26 मई को तिंदी, तिंगरेट, त्रिलोकनाथ, मोरिंग, नालडा, घोरमा, रानिका, करदंग, मूलिंग, दारचा, कोकसर और केलांग पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई को सलग्राम, चिमरट, उदयपुर, थिरोट, चूंडा, जोबरंग, बारपा, गोशाल, कोंदला, कोलोंग, सिसु और यूरनाथ पंचायतों में मतदान होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को मडग्राम, शकोली, किशोरी, जहालमा, शांशा, मालंग, तांदी, खंगसर, बरबुक और शोरिंग पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग दें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: आज प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 3 और 4 मई को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं व ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने किन्नौर व लाहौल स्पीति सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों में तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना व्यक्त की है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से सुर्खी दी है, भविष्य की चुनौतियों को देख सैन्य तैयारी करे RTRAC। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल की वादियों की कायल हुई राष्ट्रपति, कहा जमीन लेकर यहां बसने का करता है मन। दैनिक जागरण लिखता है, चिट्टा तस्करी के लिए नाबालिग बनाए जा रहे कुरियर बॉय। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, बनोई में 13 साल के बच्चे से 1030 ग्राम चिट्टा बरामद। दैनिक जागरण की एक अन्य सुर्खी है, वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा की कीमतें रखी स्थिर। प्रदेश में 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत ऊना जिले में प्राकृतिक खेती को मिल रहा बढ़ावा, करीब 14,000 से ज्यादा किसान योजना से जुड़े। केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2026 किए लागू। और प्रदेश में मौसम आमतौर पर साफ, मौसम विभाग ने 3 व 4 मई को कुछ स्थानों में बारिश व ओलावृष्टि की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग।

जूली फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे सनम फिल्म से, और इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में आप लीजिए सुनिए दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं, बिल्कुल हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का स्नेह अभिवादन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म कुछ दिल ने कहा के इस खूबसूरत गीत के साथ। उदित नारायण की आवाज है, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं निखिल विनय।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं फिल्म संगीत कुछ दिल ने कहा। कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक, उदित नारायण की मिलीजुली आवाजें हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत है,

सोनू निगम और अलका याग्निक की मधुर आवाज में अगला गीत दिल मांगे मोर इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया का।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का अगला गीत अब शामिल कर रहे हैं मझधार फिल्म से। अलका याग्निक की आवाज है और समीर ने इस गीत को लिखा है।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

इस गीत में आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत से सजाया है अन्नू मलिक ने।

कार्यक्रम के इसी आखिरी गीत के साथ फिल्म संगीत के आज के इस सुहाने सफर में बस इतना ही। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संदेश कुमार की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली गीत कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको अब सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश और साथियों की आवाज में।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम का अगला लोकगीत अंजनी ब्यास की आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं।

इंदर राज की आवाज़ में ये लोकगीत आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अब आप तक पहुंचा रहे हैं नेक सिंह ठाकुर की आवाज़ में।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
1: डाइवर्सिफाइड आवर सोर्सेज,
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: प्रदेश में 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अब तक इस चुनाव के लिए कुल 690 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। 4 मई को इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई को इच्छुक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनाव के लिए 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इन निकायों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला और 14 अन्य मतदाता हैं। शहरी निकायों के चुनाव में 1,808 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने कल 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मिशन के माध्यम से 2 साल तक प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ऊना जिला में लगभग 14,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़कर गैर रासायनिक और कम लागत वाली खेती को अपना रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसान कम लागत में कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों रहित खेती कर रहे हैं। इससे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं और पर्यावरण को और दूषित होने से भी बचाया जा रहा है। जिले के 14,240 किसानों का प्राकृतिक खेती से जुड़ाव हो चुका है, जिन्हें समय समय पर तकनीकी जानकारी के साथ साथ जैविक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्राकृतिक उत्पादों से किसानों को अधिक दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। इन किसानों का कहना है कि प्राकृतिक खेती अपनाकर वे लोगों को जानलेवा बीमारियों से दूर रखने के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर पा रहे हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त किरण भड़ाना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विकासखंड लाहौल में मतदान 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: पहले चरण में 26 मई को तिंदी, तिंगरेट, त्रिलोकनाथ, मोरिंग, नालडा, गोहरमा, रानिका, करदंग, मूलिंग, दारचा, कोकसर और केलांग पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई को सलग्राम, चिमरट, उदयपुर, थिरोट, चूंडा, जोबरंग, बारपा, गोशाल, कोंदला, कोलोंग, सिसु और यूरनाथ पंचायतों में मतदान होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को मडग्राम, शकोली, किशोरी, जहालमा, शांशा, मालंग, तांदी, खंगसर, बरबुक और शोलिंग पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग दें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। अंकुश संदल की आवाज में ये लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी की आवाज में।

कौशल्या देवी और राज प्रभाकर के मिले जुले स्वर में ये लोकगीत आपने सुना। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय लुत्फ ले रहे हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों का, फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अब शामिल कर रहे हैं कश्मीरी राम की आवाज़ में गाया हुआ।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। सुबह के 11:30 हुए हैं, अब श्रोता सुनेंगे देशभक्ति गीत। नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे।

वीर जारा फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा और संजीव कोहली का संगीत निर्देशन।

ये धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। कर्मा फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपने सुना मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के मधुर आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत।

बॉर्डर फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपने सुना सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा और अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं हिंदुस्तान की कसम। इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत। गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और साथी। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजे हैं और समय है कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं हम आपके मनोरंजन के लिए लेकर फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म है सपने साजन के।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गुप्त फिल्म से, आवाज़ें हैं उदित नारायण और सुनीता राव की।

उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे गुप्त फिल्म का ये गीत। सैनिक भाइयों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और सारिका ठाकुर की आवाज़ों में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से।

अलके याग्निक और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्योंकि का ये गीत। सैनिक भाइयों कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति साजन फिल्म से।

तो सैनिक भाइयों, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर परिवार।

स्वागत करते हैं अपनी सभी सखी सहेलियों का कार्यक्रम घर परिवार में। अपने श्रोताओं का भी आभार अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। आप सबको रेडियो सखी ज्योति का सर्वप्रेम नमस्कार। सखियों, जीवन की गाड़ी सदैव एक समतल सुगम पथ पर ही आगे नहीं बढ़ती है। जीवन यात्रा पथ पर कभी पुष्पों से सजा हमें मिलता है तो कभी कांटों की शैया भी इसमें हम देखते हैं। इसलिए कठिन समय से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि कठिन समय ही वह कसौटी है जो निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति केवल नाम का ही श्रेष्ठ है या वास्तव में अपने विचारों और मूल्यों के प्रति भी दृढ़ है। कठिनाइयां न केवल व्यक्ति की सहनशीलता की परीक्षा लेती हैं, बल्कि भीतर छिपे आत्म बल को भी उजागर करती हैं। तो ये जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं, इन्हें चुनौतियों की तरह हमने लेना है और हंसकर इनका सामना भी करना है। और थोड़ी सी बात सखियों मौसम की करेंगे। मौसम सखियों गर्मियों का है और मई महीने की आज 2 तारीख है और मौसम गर्म भी है। बीच बीच में बारिश और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और इस समय गेहूं की फसल की कटाई का काम भी जोरों पर है और किसान भाई बहन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो मौसम उनका पूरा पूरा साथ दें, ऐसी दुआ हम करते हैं। और मेघराज जो है वो भी ना बरसे ताकि साल भर का जो राशन है वह किसान भाई बहन सहेज के रख सके। और आज सखियों 2 मई को हर साल विश्व टूना मछली दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ये दिन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है टूना मछली के महत्व को उजागर करना और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। दिसंबर 2016 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार आधिकारिक तौर पर ये दिवस 2 मई 2017 को मनाया गया। और सखियों, जो टूना मछली है वह ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, खनिज और विटामिन B12 का एक समृद्ध स्रोत है, जिस वजह से इसे विश्व भर में काफ़ी महत्व दिया जाता है। हालांकि इसकी लोकप्रियता के कारण इसकी मांग बहुत बढ़ गई है और अत्यधिक मछली पकड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। टूना एक घुमंतू प्रजाति है जो लगभग सभी महासागरों में पाई जाती है। सखियों, टूना मछलियां समुद्र की सबसे ताकतवर और तेज तैरने वाली मछलियों में गिनी जाती हैं। ये लंबी दूरी तक प्रवास करती हैं और समुद्र के विभिन्न तापमानों में जीवित भी रह सकती हैं। टूना मछली की एक अनूठी विशेषता ये है कि ये शरीर का तापमान नियंत्रित रख सकती हैं, जो अन्य मछलियों में ये गुण जो है वो बहुत कम पाया जाता है। जापान विश्व का सबसे बड़ा टूना मछली उपभोक्ता है। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में भी इस मछली की अच्छी खासी मांग है। इस बढ़ती मांग के कारण विश्व भर में टूना मछली का शिकार बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है। टूना मछली न केवल खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कई देशों की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। आज सखियों, जरूरत इस बात की है कि विश्व टूना मछली दिवस को केवल एक प्रतीकात्मक दिन न बनाकर हम इस बारे में सचेत हो जाएं कि टिकाऊ मछली पालन, जागरूक उपभोग और सख्त नियम ही इसे बचा सकते हैं। नहीं तो फिर समुद्र का ये सजग प्रहरी खामोशी से हमारी आंखों के सामने विलुप्त हो जाएगा। और हर साल एक विषय के साथ इसे मनाया जाता है, इस दिवस को। और इस वर्ष 2026 का विश्व टूना दिवस का जो थीम है, जो विषय है, वह है टूना को बनाए रखना, राष्ट्रों को बनाए रखना है। और अब सखियों, कार्यक्रम में एक गीत शामिल करते हैं। आगे की जानकारियाँ इस गीत के बाद।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। और अब सखियों, कार्यक्रम में आगे बात करेंगे आपके साथ कि गर्मियों के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, हमारा रहन सहन और पहनावा कैसा हो। सखियों, मौसम हमारे जीवन को अपने हिसाब से प्रभावित करता है। कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, मौसम के अनुसार हम भी अपनी दिनचर्या को बदलते रहते हैं। विशेषकर रहन सहन, पहनावा और खान पान में ये बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। इस मौसम में सखियों तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे सारा वातावरण रूखा और नीरस दिखाई देता है। इन दिनों गर्म हवाओं यानी लू से भी बचकर रहना चाहिए और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी की वजह से पसीना सखियों ज़्यादा निकलता है और शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे कई बार उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती हैं। इस मौसम में हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही हमें लेना चाहिए। ठंडे तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में करना लाभकारी होता है। छाछ में पिसा जीरा, थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डालकर पीना गर्मियों के मौसम में राहत का काम करता है। सब्जियों में सखियों चौलाई, करेला, बथुआ, परवल, पके टमाटर, छिलके सहित आलू, कच्चे केले की सब्जी, सहजन की फली, प्याज, पुदीना, नींबू आदि का सेवन हमें खूब करना चाहिए। और हाँ सखियों, अपनी तासीर का ज़रूर ध्यान रखें और उसी अनुसार फिर अपना खान पान आपने रखना है। दालों में छिलका रहित मूंग, अरहर और मसूर की दाल का सेवन करें। फलों में तरबूज, मीठा खरबूजा, मीठा आम, अंगूर, हरी पतली ककड़ी, अनार, शहतूत, आंवले के मुरब्बे का सेवन आप कर सकते हैं। तरल पदार्थों में नींबू की शिकंजी, आम का पन्ना, बेल का शरबत, नारियल पानी, लस्सी का सेवन जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, शरीर को ये ठंडक से भरता है। और सलाद तो इस मौसम में सखियों खूब हमें भरपूर हमें खाना चाहिए। गर्मियों के इस मौसम में खट्टे और मसालेदार चीज़ों से, तले हुए व्यंजनों से और बासी खाने से भी ज़रूर परहेज़ रखें और बाहर के खाने से भी दूरी बनाकर रखें। और अगर घर से आप बाहर हैं और उस समय यदि भोजन का समय हो जाए तो गर्मियों के इस मौसम में सखियों फल जो है वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उस समय आप कोई फल जो है वो खा सकते हैं। और इन दिनों पंखे, कूलर, एसी का प्रयोग भी बढ़ जाता है, ऐसे में एकदम ठंडी जगह से अचानक निकलकर धूप में ना जाएं। और अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ा रुककर पसीना सूख जाने के बाद और शरीर का तापमान सामान्य होने पर ही पंखे, एसी को आप चलाएं, जल पानी को आप पिएं और फ्रिज के पानी की बजाय घड़े का, मटके का, सुराही का जो पानी है वह पीना सेहत के लिए अच्छा रहता है। और यदि फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो फिर उसमें सादा पानी मिलाकर ही पिएं। पहनावे की सखियों बात करें तो गर्मियों के इस मौसम में कई लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा पसीना भी आता है। इस समस्या से बचने के लिए सूती कपड़ों का चुनाव करें और सूती कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक का एहसास होता है, साथ ही ये संक्रमण को भी नियंत्रित करता है। सिंथेटिक फैब्रिक पहनने से बचें क्योंकि इसमें हवा का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। और हमेशा हल्के रंग के थोड़े ढीले वस्त्र इस मौसम में पहने, ढीले ढीले कपड़े हवा के प्रभाव को बढ़ावा देते हैं और आपको ठंडा रखते हैं। सूती, मलमल और लिनन जैसे प्राकृतिक कपड़े पसीने को सोखते हैं और आपको तंदुरुस्त रखते हैं। सूती कपड़ा सखियों जल का सबसे अच्छा अवशोषक होता है और धूप से बचने के लिए टोपी, स्कार्फ और धूप का चश्मा आप पहन सकते हैं। और पानी पीकर ही घर से आप बाहर निकले, पानी की बोतल और छाता जो है वो हमेशा अपने पास ही रखना है और धूप में अनावश्यक रूप से आप ना जाएं। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद सखियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम घर परिवार में। और आज सखियों सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आपसे बात होती है कपड़ों से संबंधित, जिसमें आज हम बात करेंगे आपसे ऑर्गेन्जा कपड़ों की देखभाल की। शादी के परिधानों से लेकर सखियों शाम के कार्यक्रम हों, घर की सजावट तक, ऑर्गेन्जा के कई बहुमुखी और सजावटी उपयोग हैं। सखी, ऑर्गेन्जा एक बेहद कोमल, हल्के वजन, थोड़ी चमकदार बनावट वाला और यह कपड़ा पारदर्शी होता है, यानी इसे बहुत कम घनत्व में बुना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पारदर्शी और अपेक्षाकृत पतला होता है। पहले ऑर्गेन्जा केवल रेशम से ही बनाया जाता था, हालांकि अब पॉलिस्टर और नायलॉन जैसे पूरी तरह से सिंथेटिक कपड़ों के आने से इस कपड़े को अन्य सामग्रियों से भी बनाना संभव हो गया।

और जब भी इन्हें इस्त्री करना हो तो ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर एक सूती कपड़ा रखकर ही इस्त्री करें, सीधे कपड़े पर आप इसे प्रेस ना करें। और ऑर्गेन्जा साड़ियों को सूती या मलमल के कपड़े में लपेटकर रखना सबसे बेहतर रहता है। इत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं, जी हाँ परफ्यूम यदि आप लगाते हैं, तो सीधे कपड़े पर ना डालें, इससे दाग जो है वो पड़ सकते हैं। तो इत्र का जो प्रयोग है वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और अधिकांश सखियों रेशमी कपड़ों की तरह रेशमी ऑर्गेन्जा कपड़े की उत्पत्ति भी चीन में ही हुई, और आज भी चीन ऑर्गेन्जा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। हमारा देश भारत भी ऑर्गेन्जा का एक बड़ा निर्यातक है, जहां बेंगलुरु क्षेत्र में एक सख्त किस्म का ऑर्गेन्जा उत्पादित किया जाता है। फ्रांस और इटली देश भी उच्च गुणवत्ता वाला ऑर्गेन्जा बनाते हैं। और सखियों, कार्यक्रम के अंत में अब हम आ पहुँचे हैं जहाँ बात आपसे होती है खान पान से जुड़ी हुई। और बिल्कुल सखियों, सेहत और स्वाद की बातें इसमें हम आपके साथ साझा करते हैं और कुछ ना कुछ खास भी बनाते हैं घर परिवार के रसोई घर में। तो आज सखियों हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम। जी हाँ सखियों, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बच्चों की जो सबसे पहली डिमांड होती है वह होती है आइसक्रीम। तो क्यों ना घर पर ही हम बनाएं और आजमाएं आज की हमारी ये रेसिपी जो आपको हम बताने वाले हैं। सखियों, इसकी सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है वह आसानी से हमें मिल जाती है और किसी भी तरह के रसायन या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, जिससे यह सेहत के लिहाज से भी पूरी तरह सुरक्षित होती है। तो देखते हैं सबसे पहले तो सामग्री हमें क्या चाहिए। मिक्स फ्रूट, जी हाँ सखियों, मिश्रित फलों की आइसक्रीम हम बना रहे हैं, मिले जुले फल इसमें हम लेंगे। इसके लिए आप सखियों ताज़े आम, केला, अंगूर जो है वो एक कटोरी, ये फल आप ले सकते हैं, ये अपनी मन पसंद फलों का भी चुनाव आप कर सकते हैं। रंग बिरंगी चेरी इसके लिए लेंगे। आधा किलो मलाईदार दूध लेंगे, जी हाँ जिसे हम फुल क्रीम दूध कहते हैं वह इसके लिए हम लेंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और एक कटोरी ताज़ी मलाई हम लेंगे। और थोड़ी सी सखियों शक्कर लेंगे। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस अनुसार जो है वो ले सकते हैं। साथ ही काजू, बादाम, पिस्ता जैसे सूखे मेवे भी हम ले सकते हैं, इससे स्वाद जो है वो और बढ़ जाता है। तो बनाना सखियों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दूध को अच्छे से हमने उबाल लेना है, और दूध को उबालने जब हम रखेंगे उससे पहले थोड़ा सा दूध आप निकाल लें, जिसमें हमने एक चम्मच फिर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से उसमें मिलाना है, गुठलियाँ ख़त्म करें और फिर उबलते हुए दूध में हम इसे मिला देंगे। इससे दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, और दूध को गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। दूसरी तरफ मलाई को अच्छे से हमने फेंट लेना है। इसके लिए इलेक्ट्रिक हैंड बीटर का इस्तेमाल आप कर सकती हैं या मिक्सर में भी सखियों फेंट सकती हैं। साथ ही सभी फलों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। अब एक बड़े बाउल में कोई भी एक बड़ा सा बर्तन ले, उसमें फेंटी हुई मलाई, उबला हुआ दूध जिसे ठंडा करके हमने लेना है, जी हाँ बिल्कुल, जब वो ठंडा हो जाए तब आप इसे फेंटी हुई मलाई में डालें, और शक्कर डालकर एक बार फिर से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसमें कटे हुए फल और चेरी हमने डाल देनी है। आप गुलाब की सूखी जो पंखुड़ियाँ हैं उसे भी डाल सकते हैं। और इस पूरे मिश्रण को सखियों अच्छे से मिलाकर हमने फिर एयर टाइट कंटेनर में भर लेना है, और फिर फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद जब आप इसे सर्व करें तो ऊपर से सखियों ड्राई फ्रूट्स जिन्हें आप बारीक जो है वो काट लें और उसको डालकर फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बेहद ही आसान है ये रेसिपी, तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई करें। और चलते चलते सखियों आपको ये गीत सुनवाते हैं।

कार्यक्रम के इसी अंतिम नगमे के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया रेडियो सखी ज्योति के साथ। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुनील शर्मा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जतेंद्र सिंह पाल। प्यारी सखियों, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बजने को है और ये समय है आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचारों का और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणना कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया।
2: ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फागन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission of India's decision to appoint only central government employees as counting supervisors. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. During the hearing, Justice Bagchi observed that the choice of officials rests with the Election Commission. Counsel for the Commission clarified that returning officers are state government employees and are responsible for appointing other officials. In its order, the Apex Court reiterated that the Election Commission circular must be implemented in letter and spirit. The Supreme Court has said that no further order was required on the plea filed by the All India Trinamool Congress challenging the dismissal of its petition by the Calcutta High Court.

0: The petition was against a circular issued by the Election Commission of India on deployment of central government personnel for vote counting in West Bengal. Polling for the 294-member West Bengal Assembly was held in two phases on April 23 and April 29. Counting of votes will take place on May 4. Nearly 37% voting turnout has been recorded till 11 a.m. in re-poll in 15 booths of two assembly constituencies in West Bengal's South 24 Parganas district. Magrahat Paschim registered 38.2% voter turnout, while in Diamond Harbour it was 35.92%. In Kerala, all arrangements have been completed for the counting of votes polled in the assembly elections held across 140 constituencies on April 9. Chief Electoral Officer Ratan U. Kelkar informed that counting will begin at 8 a.m. on Monday at 140 counting centres set up across 43 locations. Field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The exercise will continue till the 30th of this month. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the municipal corporations of Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till the 15th of this month. In Bihar, the first phase of Census 2027 began today with the commencement of house listing and housing enumeration across the state. The second phase of Census 2027 is scheduled to be conducted in February next year. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted four parliamentary committees for the year 2026-27. Lok Sabha BJP MP Dr. Sanjay Jaiswal has been appointed as a chairperson of the Committee of Estimates comprising 30 members of the lower house. The Committee on Public Undertakings comprising 15 members from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha will be headed by BJP MP Bejayant Panda. Mr. Birla has appointed Congress MP from Lok Sabha KC Venugopal as the chairperson of the Public Accounts Committee, while the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be headed by Lok Sabha BJP MP Faggan Singh Kulaste. The term of these committees will be from the 1st of this month to the 30th of April next year. Punjab Police has filed FIRs under non-bailable sections against Rajya Sabha MP Sandeep Pathak, who had recently joined the BJP, along with six other Rajya Sabha MPs of the Aam Aadmi Party, that triggered a fresh political flashpoint in Punjab. According to sources, two FIRs have been filed in two different districts of Punjab. However, the names of both the districts have not yet been officially disclosed. US President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations, but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
2: आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है। यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं। कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबू जी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने। दुनिया को समझने का एक तरीका और है, क्या कि सुकून से ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किलें हमें लगे। हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी हैं। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं। पान खाए सैया हमारो, अच्छा आपने ये गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान, इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। अब देखिए हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है, नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को, वो इंसान ही क्या जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही हैं वो कौन सी कलाकार हैं? जी हाँ, ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। आपने जो पहेलियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए वो बड़ी मुश्किल हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे फूल कहीं कोई चला बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफ़र को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई उसे समझना आसान तो नहीं है, आज सुरीला सफ़र आसान नहीं लेकिन कुछ जज्बाती ज़रूर है जिसमें ज़िंदगी रास्ते बाजी दीवाना पैसा चलना फूल कांटे बाबूजी दुनिया अपनी धुन जैसे कुछ शब्दों को लेकर आपने गाने चुने हैं पर कौन कौन से चुने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, इस दुनिया में जिंदगी के रास्ते फूल और कांटों पर से चलते चलते दीवाने लोग गुजरते हैं, बाबूजी आगे चलकर बाजी कौन जीतेगा ये तो राम जाने। उन्होंने कुछ गाने लिखे हैं कि आपने नमस्ते दिल तेरा आशिक का या एहसान या रास्ते पर रास्ते जाने वाली दीवाने हैं दीवानों का न घर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम जैसे बहुत सारे गीतों को लिख कर भेजा है लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ एक गीत दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए ये हमारी लिस्ट में जरूर शामिल था जो आपने अभी ना, लेकिन बाकी गाने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं हैं। तो सफर जब हम निकल ही पड़े हैं दोस्तों तो देखिए सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहीं घोड़ा कहीं गाड़ी कहीं कार कहीं पैदल चलने वाले लोग, कहीं ट्रेन कहीं बहुत कुछ साधन अपनाने वाले लोग जो अपने अपने साधनों से चले जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं, ना किसी की चिंता ना किसी की फिक्र, बस अपनी ही मंजिल अपनी ही दौड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं रहता कि किसी के जीवन पर किसी के दिल पर क्या गुजर रही है।

अच्छा बताइएगा, आप कभी किसी रिक्शा पर बैठे हैं, आपने रिक्शा की सवारी ली है और आपको लगा है कि जो रिक्शा चला रहा है उसकी हालत क्या होती है जब हम अतिरिक्त भार उसकी रिक्शा पर लाद देते हैं, कभी सोचा आपने?

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि अरे भाई, विविध भारती का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए सुहाने सफर की गाड़ी अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है गाड़ी पकड़ने का।
1: अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पॉकेट मार रहे हैं।

0: जी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन इस नए कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्यक्रम नया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इबारत है, लगता है आज के गीत जिंदगी और दुनिया के इर्द गिर्द होंगे, जैसे जिंदगी कैसी है पहली या जिंदगी एक सफर है सुहाना, बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आज हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि हमारे श्रोता लगभग हार गए हैं हमसे, क्योंकि आपने जो जो प्लेलिस्ट बनाई है हमारी इबारत पढ़कर, वो गाने हमसे तो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर और जोर लगाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार को हमारा नमस्कार, इस चिलचिलाती धूप में भी ठंडा का सफर जारी है जो विविध भारती से हमें मिल रहा है, तो ये सुनहरा चमकता दमकता सफर ठंडी फुहार की तरह चलता रहे, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम गीतमाला में आपने हम सभी श्रोताओं के खूब कॉमेंट्स दौरान प्रोग्राम में शामिल किए, वैसे ये नया प्रोग्राम है सुरीला सफर, पूरी तरह समझ तो आ गया है लेकिन देखते कि हम श्रोताओं के कितने गीत आपके चुने गीतों से मेल खाते हैं। सुरीला सफर नाम के अनुसार बहुत ही सुरीला होने वाला है, निश्चित है ये कार्यक्रम सुरीला है, लेकिन ये और सुरीला तब होगा जब आप हमारे गाने, आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएंगे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियों से पूर्ण संगीतमय सफर सुरीला सफर जरूर चलेगा, और आप पेचीदा प्रश्न पूछ रहे हैं पर गाने मजेदार हैं, प्रोग्राम प्रस्तुति का अंदाज हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है इस कार्यक्रम में, तो भाई कार्यक्रम अलग है तो प्रस्तुतकर्ता का अंदाज भी अलग होगा ना। तो आपने हमें बताया नहीं, हमने दो सवाल आपसे किए थे उनके बारे में बताइए, कि पहला कि पत्थर फिल्म से और कितनी फिल्में बनी है जिसमें, जैसे काला पत्थर है या इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिसमें पत्थर शब्द भी जुड़ा है, ऐसी फिल्मों के नाम बताइए। और साथ ही हमने कहा था कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस फिल्म में हारमोनियम कौन बजा रहे हैं और साथ में जो नर्तकी हैं वो कौन हैं। अच्छा, साथ में एक तीसरा सवाल ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रिक्शे पे आपने सवारी कब की थी और क्या कभी रिक्शा वाले से आपने मोल भाव किया? देखिए जनाब, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, यानी अंतिम सांस तक हम इस सफर में चलते रहेंगे, और बहुत सारी चीजें बहुत सारी बातें इस सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना जमाना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को, तस्वीरों को घुमा घुमा कर ऐतिहासिक स्तर और फिल्मों के दृश्य देखते थे। याद कीजिए बक्से नुमा वो यंत्र, जब वो आदमी आवाज़ लगा लगा कर हम बच्चों को लुभाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें लेंस और अंदर रील चलाने की व्यवस्था होती थी और हम एक आँख गड़ा कर उसको देखा करते थे, और इसमें हमें कुतुब मीनार, गोल घर जैसे न जाने कितने चित्र दिखाए जाते थे। याद आया? नहीं तो ये गीत सुनते हैं, फिर बताइएगा आपके बचपन में ये दिन कब आया था।
1: ए

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए।

0: जी हाँ, आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बायोस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला, चलता फिरता वो सिनेमा घर जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: आचा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काला से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंजरे
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना? तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आपने गीत सुना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं। कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता है, कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है, पर बाबू जी दुनिया सचमुच एक तमाशा है, हंसी और आंसू का एक झमेला है, यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है, ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है। फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी ही धुन में गुनगुनाने का, गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है, क्या आइए सुनते हैं इस गीत में।

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: बाबू आना, सुनते जाना।
2: महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो, मौजी मौजी बोलो, मौजी मौजी बोलो,
2: बाबू आना, सुनते जाना।
1: धत, महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
2: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
1: चोरी का है माल इसका,

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा, ऐ जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा जा मुंह धो के आ।

0: लड़की पहाड़ी है काटे की लाला। जाना
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसको, दुकान खाना।
2: जी बोल जी बोल बोल।

0: लड़ना मुझसे पर ना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी कालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके आलू।

जुमरू फिल्म का गाना था बहुत ही मजाकिया गीत। किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी, हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं। विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर, लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं, लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी, सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मैं गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ हैं, गीतकार बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही हैं नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है, फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है कि खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा, आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं, लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। तो जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लुट न जाना, बताइए कभी आप लुटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए फूल हैं तो कांटे भी हैं, कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या, कांटा लगा हाय लगा। हाँ,

0: ऐसी बात तो नहीं है कि आप इबारत के बारे में नहीं जानते होंगे। आपने जिस अंदाज में लिखा है वो अंदाज थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन हाँ, इबारत मतलब जो लेख हमने आपको दिया है, जो तहरीर, जो मजमून, जो लिखावट, जो लेखन शैली हमने आपके लिए रखी है, जो लेख या पाठ है ना जो आपके लिए रखा है, उसको पढ़िए। जो गद्य, इसे आप बहुत अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि हमने जो गद्य के रूप में लिखा है विचार, उस विचार या पाठ को आप पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कांटा, कहीं फूल है कहीं कांटा, तो कांटा लगा। और अभी था जैसे थोड़ी देर पहले कोई घोड़े पर दौड़े जा रहा है, तो ये है घोड़ा, है ना, मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी। इस तरह के गीत हमने आपके लिए चुने ताकि थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए और आपकी और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कैसे कि हमारे विचार आपके विचार एक हो जाएं, वही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इबारत का मतलब क्या है और अब आप तुरंत अपने विचार हमें लिखकर भेजने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, लता मंगेशकर की आवाज थी, फिल्म का नाम था समाधि, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। हम समझ सकते हैं कार्यक्रम नया है इसलिए समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिमागी काम है और हमें सोचना पड़ता है कि इस शब्द पर कौन कौन से गाने कहे गए हैं, लिखे गए हैं और हमने कौन से गाने छांटे हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है, सबसे अच्छी बात यही है, और क्या कह सकते हैं आपको, शुक्रिया। जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, आहा, अरे ऐसा

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था डॉन, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई बनारसी पान तो हम सब ने लगभग खाया होगा, लेकिन आपने अपने शहर में कौन सा पान खाया है और वो पान कैसे लगाया जाता है, आप कौन सा पान खाते हैं इसके बारे में बताइएगा। और हाँ, पत्थर पर जब हमने कुछ सवाल आपसे किए थे, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि लाल पत्थर, फूल और पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में पत्थरों से बनी है, पत्थरों का शहर, लाल पत्थर, फूल और पत्थर, पत्थर, पत्थर के फूल, पत्थर के ख्वाब, पत्थर दिल, है ना, और हीरा और पत्थर, पत्थर के लोग, बहुत सारी फिल्में पत्थर शब्द पर बनाई गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं जहां आशा भोंसले और मन्ना डे साहब गा रहे हैं फिल्म आंखें का गीत, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि की धुन है।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी क्षण भंगुरता पर आधारित है। क्षण भंगुरता दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षण एक छोटा समय, एक पल, भंगुर नाजुक अस्थिर टूटने वाला ऐसा स्वरूप जो केवल एक क्षण के लिए है, अस्थाई और नाजुक। जीवन की गति किसी भी पल रुक जाती है। हम जाने किस भ्रमजाल में जीते हैं कि अब हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होती है। जीवन परिवर्तनशील है। इसी जीवन के हर पल की अस्थिरता और अल्पकालिकता को क्षण भंगुरता कहते हैं। हमारे सुख दुख, मिलन विछोह सब क्षणिक होते हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे सुख हो या दुख और खुशी हो या गम, ये सब बदलते रहते हैं।

ये बात हम सभी को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका नष्ट होना तय है। जैसे प्रकृति अपना रंग व्यवहार बदलती है, वृक्षों में पत्ते लगते हैं, फूल फल लगते हैं और एक दिन झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे हमारा मनुष्य जीवन भी अपनी उम्र की अवस्थाओं को पार करता हुआ एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब क्षण भंगुर लगने लगता है। जो चीज़ें जन्म लेती हैं वे बदलती हैं और अंततः मिटती भी हैं। उनके क्षणिक माया मोह में उलझना व्यर्थ है, लेकिन मानव मन बड़ा चंचल होता है। वो हमेशा पाने की लालसा रखता है, खोने के बारे में सोचता ही नहीं। हमारी भावनाएं, रिश्ते, सफलता सब क्षणभंगुरी तो हैं।

आज जो है वो कल नहीं होगा। रूप स्वरूप का परिवर्तन होना तय है, पूर्व निर्धारित है। फिर खुद को भ्रम में क्यों रखना? जीवन को सादगी सरलता से जीना, उच्च आदर्शों का पालन करना और खुद को अनुशासित रखना ही मन को शांति प्रदान करेगा। और अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में लगा देते हैं तब इस जीवन की क्षणभंगुरता की सत्यता से भयभीत नहीं होंगे। ध्यान और मंगल की शिक्षाएं यही सीख देती हैं कि क्षणभंगुरता को समझकर अन्य चीजों से लगाव कम करें। इसे समझने से विवेक और संतुलन आता है। क्षणभंगुरता हमें ये सिखाती है, सब कुछ बदलता रहता है, स्थायित्व भ्रम है। वर्तमान पल का महत्व समझो, वही वास्तविक है। संतुलन, धैर्य और अपनापन इसी समझ से आता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम

0: चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनावों में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
5: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताज़ा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था रानी रूपमती। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और संगीत दिया था एस एन त्रिपाठी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

फिल्म नया दौर का गीत सुनिए, गायिका आशा भोंसली, शब्दकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में हम आपको शकील बदायूनी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मदर इंडिया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ, और अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी ठीक 3 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: हम पंछी एक डाल के अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना आशा भोंसले और साथियों का गाया हुआ। गीतकार पीएल संतोषी थे और संगीतकार थे एन दत्ता।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

यह अवश्य आशा भोंसले की, और फिल्म का नाम था मेरा सलाम। गीत को शिवान रिजवी ने लिखा और हाफिज खान ने संगीतबद्ध किया था।

ग्यावस्थी मन्ना डे की और फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा था और धुन बनाई थी एस एन त्रिपाठी ने। ग्यावास गीता दत्त की फिल्म का नाम हिल स्टेशन।

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में ये था एस एच बिहारी का लिखा गीत, गीता दत्त की आवाज में फिल्म हिल स्टेशन से। और आइए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनते हैं।

0: तलत महमूद की आवाज में अभी आपने छोटे बाबू फिल्म का गीत सुना। कैफ इरफानी की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। इस गीत के साथ ही आज का
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचारों का और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। नाहन में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी स्थानों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता चुनावी वायदे पूरा ना करने वाली कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से तंग आ चुकी है और इन चुनाव में सरकार को जवाब देगी।
1: 4 कॉरपोरेशंस, 22 नगर पालिकाएं और 25 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि 3.5 साल में जिस कांग्रेस की सरकार ने जनता का जीना दूभर किया है, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
0: प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को की जाएगी। इसके बाद 6 मई को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर उन्हें चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। नगर निकायों के लिए मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा और इसी दिन शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच नगर निकाय चुनावों के लिए विभिन्न स्थानों पर आज कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। किन्नौर जिला में पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से निपटाने के लिए रिकांगपिओ में नियंत्रण कक्ष व मीडिया सेल स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि ये नियंत्रण कक्ष चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों की सतत निगरानी करेगा। इसके माध्यम से मतदान से पूर्व, मतदान दिवस और मतगणना के दौरान विभिन्न विभागों व चुनाव से जुड़े अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया सेल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता व सूचना के प्रभावी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर हमीरपुर जिला में पंचायत चुनावों के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। मीडिया सेल के नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होंगे और जिला लोक संपर्क अधिकारी सभी तरह की आवश्यक सूचनाओं व आदेशों की जानकारी मीडिया के साथ साझा करेंगे। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें याद करते हुए कहा कि डॉक्टर परमार ने न केवल प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दिया बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी पुण्यतिथि पर डॉक्टर परमार को नमन किया। इस दौरान सिरमौर कल्याण मंच सोलन द्वारा भी आज हिमाचल निर्माता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रसायन मुक्त स्वदेशी गाय आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मिशन के माध्यम से 2 साल तक प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ऊना जिला में लगभग 14,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़कर गैर रासायनिक और कम लागत वाली खेती को अपना रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसान कम लागत में कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों रहित खेती कर रहे हैं। इससे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं और पर्यावरण को और दूषित होने से भी बचाया जा रहा है। जिले के 14,240 किसानों का प्राकृतिक खेती से जुड़ाव हो चुका है, जिन्हें समय समय पर तकनीकी जानकारी के साथ साथ जैविक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्राकृतिक उत्पादों से किसानों को अधिक दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। इन किसानों का कहना है कि प्राकृतिक खेती अपनाकर वे लोगों को जानलेवा बीमारियों से दूर रखने के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर पा रहे हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मंडी जिला की चिट्ठी। इसके लेखक हैं मुनीष सूद, वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के साथ साथ चार नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। मंडी जिला भी इससे अछूता नहीं है। जहां नगर निगम और पंचायत चुनाव प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है, उसी क्रम में अब नामांकन प्रक्रिया का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंडी जिला की 577 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 7, 8 और 11 मई 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 12 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को अभ्यर्थी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरा

0: होते ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला की 577 ग्राम पंचायतों में चुनाव तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को संपन्न होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और मतदान समाप्त होते ही उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया तेजी से पूर्ण होगी। पहले चरण में 26 मई को विभिन्न विकास खंडों की चयनित ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 28 मई को अन्य पंचायतों में मतदान कराया जाएगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को शेष पंचायतों में मतदान संपन्न होगा। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सतर्कता बरतने और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत खंड विकास परियोजना प्रबंधन इकाई मंडी द्वारा कई गत दिनों आजीविका गतिविधियों के अंतर्गत बग्गी में संचालित निटिंग प्रशिक्षण व कार्यक्रम संपन्न हो गया। करीब 4.5 माह तक चले इस प्रशिक्षण में 8 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों और व्यवहारिक कौशल का प्रशिक्षण हासिल किया था। प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रशिक्षुओं को परियोजना की ओर से टूल किट भी प्रदान की गई थी, ताकि वे स्वरोजगार शुरू करने, अपनी आजीविका को सुदृढ़ बना सकें। कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. हेमराज वर्मा ने इस प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम बताया। इस दौरान विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. खूबराम ठाकुर, खंड परियोजना प्रबंधन डॉ. राजेश कुमार और कृषि विकास अधिकारी हंसराज वालिया ने भी प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें अपने कौशल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। प्रशिक्षुओं ने भी प्रशिक्षण के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए परियोजना प्रबंधन इकाई का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे अपने लिए उपयोगी बताया। मंडी के 17 वर्षीय पहलवान शौर्यवीर यादव ने महाराष्ट्र के सांभाजी नगर में गत दिनों आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया। उन्होंने 110 किलोग्राम भार वर्ग की ग्रीको रोमन शैली में ये उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने क्वार्टर फाइनल में राजस्थान के पंकज बाली को पराजित किया और सेमीफाइनल में केरल के स्टेफनी सिप को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में वे मेजबान महाराष्ट्र के रोद्रा से हारकर उपविजेता रहे। जिला में गत दिनों उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला जल व स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि निजी जल टैंकों को नियमित साफ सफाई और गंदे पानी के रिसाव को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मियों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए लोगों को टैंक साफ रखने और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जागरूक करना जरूरी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जल स्रोत प्रभावित होते हैं। जिला के सरकाघाट उपमंडल की गोपालपुर पंचायत के लोगों ने 20 वर्षों से अधूरी पड़ी गोपालपुर बतलाड़ी सड़क के विरोध में पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है। करीब 40 स्थानीय लोगों, जिनमें महिला मंडल के सदस्य भी शामिल थी, उन्होंने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी चिंता व्यक्त की। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला सुंदरनगर ने गत दिनों एंजल्स पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम में वैज्ञानिक अधिकारी बनीता ठाकुर ने वायु, जल और मृदा प्रदूषण जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए प्लास्टिक का उपयोग, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे उपाय अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने हमारी शक्ति हमारा ग्रह थीम्स के महत्व को भी बताया। इसके साथ ही मंडी जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 3:10 और 28 सेकंड हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

ये अवस्थी किशोर कुमार की फिल्म याराना के लिए गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखा गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने। और आप हैं अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार। आपने लिखा है जिला बालोतरा से ये खत। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और उनके परिवार वाले।

मोहम्मद रफी को आपने सुना, फिल्म का नाम था आप तू ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाहे गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अंबाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं बोरीवली गोराई महाराष्ट्र से एकता और उनके परिवार वाले।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ही कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का, मिश्का
2: जी हजूर,
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए हैं, लेकिन आरती फिलपौतिक जामली ने कहा साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, बस वही नहीं है।
1: आएंगे कैसे, वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहां से, चल चल। और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इतला मिलनी चाहिए, समझा?
2: जी अच्छा
1: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ।
2: जी बहुत अच्छा। मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
1: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
3: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
3: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
3: जी जी
1: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है
3: जी।
1: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं।
3: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
1: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं। वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
3: भेस बदल कर?
1: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटन एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करें।
3: मुआयना खास तौर से?
1: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक में रहते। मेरा दोस्त भी देखो ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े हैं। हाँ हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरिलोवना के यहां गया था, मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई है।
4: लेकिन मेयर साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना?
3: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब है? हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
1: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
3: जी,
1: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
3: जी,
1: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
3: जी। हाँ।
1: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
4: मेयर साहब
1: जी,
4: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
1: जी।
4: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है। सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
1: वे वे, वे वे, वे वे, क्या बात कही है। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुँच पाएंगे, समझे कुछ?
4: जी जी, मैंने तो ऐसी ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किच की आंखें हैं।
1: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ।
3: जरूर जरूर, जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब।
1: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ, पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
3: जी।
1: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
3: जी?
1: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
3: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कर रहा देता
1: हूं। और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें। अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लेटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए। अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
3: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को आप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं। बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा? देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगह दे, बहुत ही भले नागरिक हैं। जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते।
1: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जज ल्यापकिन त्यापकिन।
4: जी,
1: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं।
4: जी हाँ।
1: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है। जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं, और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूँ मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
4: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। अभी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
1: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है। कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप? और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना
4: जी,
1: माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
4: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक रही। बात यह है, हुआ ये कि बचपन में
1: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ, वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
4: लीजिए। साहब मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, देखिए ना, रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
1: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
4: वाह साहब, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
1: बस, इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
4: जी,
1: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए।
4: जी,
1: मैं जानता हूँ।

0: आप कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
1: बस, इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
2: जी,
1: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए।
2: जी
1: मैं जानता हूँ।

0: कसम खा रखी है।
1: और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
2: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
1: मुआयना, वैसे मुआयना वैना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूँ भेष बदल कर।
2: जी, भेष बदल कर,
1: भेष बदल कर। मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रों, तुम सब यहाँ जमा हो। हाँ, तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
2: जी?
1: जरा आपके हाल चाल पूछने हैं। और जज साहब, आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए।
3: दोस्तों, हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
2: कौन कौन कौन?
4: नमस्कार,
1: नमस्कार। तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है, कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
4: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
1: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
4: ख्याल क्या है मेयर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
1: लड़ाई?
4: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला।
1: तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर। अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है। ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
2: जी जी,
1: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी
2: जी
1: है।
2: जी हाँ, ठीक कह रहे हैं।
1: लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है। शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
4: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
1: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना?
4: समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती हैं कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
1: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इतला हो?
4: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती। वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत थोड़े को थे।
1: अच्छा?
4: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
1: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
5: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
1: आप बकते हो लियापकिन त्यापकिन। कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
5: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
1: जी।
5: हाँ छोड़िए। हाँ याद आया,
1: क्या
5: ये बताइए, क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
1: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो। मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर है? लगता है इंस्पेक्टर जंगल सरपंच आ गए हैं।
6: हे भगवान,
7: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
8: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
7: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर चिंस्की, मेरा बोलना काफी है।
8: पर बॉब चिंस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब, दरवाजा खोलिए।
1: ये आप दोनों महाशय हैं।
9: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
10: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
2: क्या हुआ डॉबचिंस्की? क्या बात है, हुआ रे भाई, क्या हुआ?
10: अजीब खबर है, हम लोग होटल में पहुंचे थे कि
9: हाँ, मैं और डॉबचिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
10: डॉबचिंस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो
9: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉबचिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
10: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
9: जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
1: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
9: सुन लिया ना डॉबचिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुना। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोबकिन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई,
10: समोसे वाले की दुकान के पास।
9: हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इससे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी, वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
10: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
9: हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत रोको डॉबचिंस्की, इसने मुझसे कहा के मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
10: सूट बूट पहने हुए
9: डॉबचिंस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रोबी।

0: गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा, हो न हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है। लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी, 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग दल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
1: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
0: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था, यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: कौन सा अफसर?
0: अरे भूल गए मेयर साहब, अजीब पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: क्या
0: यानी इंस्पेक्टर जनरल?
1: क्या नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता।
0: वो कैसे हो सकता?
1: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं।
0: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
1: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
0: इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव।
1: उसके कमरे का नंबर क्या है?
0: नंबर 4,
1: जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी
0: ना। और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
1: 2 हफ्ते
0: मारे गए, अब क्या होगा?
2: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब, हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत करने के लिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहाँ जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहाँ जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
0: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये गरीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप? मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का, मिश्का
3: जी हुजूर,
1: गाड़ी तैयार है?
3: जी तैयार है।
1: प्रोहरात कहाँ है?
3: हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
3: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था, सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भरकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे? जल्दी जल्दी।
2: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
4: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
2: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के छोके आते रहते हैं उसे आप किस तरह?
4: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और न पढ़ा।
5: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ
1: कौन
0: कौन है?
1: कौन?
6: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
5: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
6: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
5: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
6: जी बहुत अच्छा।
5: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
6: जी मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता
5: हूं। एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप? मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं, डॉबचिंस्की तुम मेरे साथ।
0: जी बात मेयर साहब, मुझे भी साथ ले लीजिए।
5: समझदारी की बात करो बॉबचिंस्की, गाड़ी में 2 ही आदमियों की जगह।
0: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूं।
5: अच्छा आइए आइए, चलिए चलिए
7: चलिए चलिए। सुनिए सुनिए,
8: अरे पापा तो चले गए। मम्मी
7: और क्या
8: मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है।
7: मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है?

0: जाने से पहले हमें बुलाए क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
1: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
2: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
3: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है।
4: और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलिस्टकोफ के लिए यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
3: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए, कुछ ना पूछिए। हाँ खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं, इतने जोर की भूख लगी है कि ओह मालिक आ गए। मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
5: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ।

0: मेरे होटल की रोटियां।
1: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
0: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
2: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
0: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
2: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
0: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
1: इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्त को, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकले भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
0: मालिक लीजिए वेटर खाना लेकर आ गया।
2: खाना
0: जी?
2: यानी कि खाना? खाना
3: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
2: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक। मेरा मतलब है मित्र, पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है, लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
3: जी जी।
2: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, शे क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
3: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
2: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई? मछली, कलेजी, कटलेट और वो अचार चटनी।
3: बाकी चीजें नहीं है।
2: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से घा उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें अड़प रहे।
3: अजीब, ऊंचे ग्राहकों के लिए है, आप जैसों के लिए नहीं।
2: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
1: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
2: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल गमार से बहस कर सकूं। ये सूप है जैसे गर्म पानी में नमक खोल दिया गया।
3: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
2: वापस ले आना? लो आसिफ, बाकी तुम पी लो।
0: बहुत अच्छा।
2: ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ, थोड़ा तुम भी लो।
3: मैं अब जा सकता हूँ।
2: सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ तुम बेटर जी के साथ चले जाओ, ये खाना है सूप की जगह उबला पानी और गोश्त।
0: मालिक मालिक नीचे मेरा आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
2: क्या?
0: जी हाँ।
2: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी? नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे, मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे, तुम्हारी ये मजा।
4: श्रीमान मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
1: आप भी मेरी नमस्ते दीजिए।
4: क्षमा कीजिएगा बिना पूछे ही चला।
1: नहीं, कोई बात नहीं।
4: दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह।
2: लेकिन आप ही बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है, वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है, मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों, और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है, चाय में मछली की बू आती है, और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
4: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे सच बताऊं उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है, ताज्जुब है ये आदमी कहां से कूड़ा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं, मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
2: नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
4: हे भगवान, ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत।
2: जनाब आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
4: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
1: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं?
2: माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं,
4: मुझसे गलती हुई हुजूर, दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है, और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है, तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ही ली हैं मैंने, और वो जो आपने वो देखी ना हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने

0: बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया।
1: मुझे इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते।
0: नहीं नहीं,
1: मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
0: धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चों, मैं भी तुझे अपने जाल में फांस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूं। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा पहला।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं। मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा।
0: ये लीजिए, गिनने के कष्ट न कीजिएगा,
2: पूरे 200।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
0: अरे डॉबचिंस्की, शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
1: वेटर को बुला लाओ।
3: जी अच्छा।
4: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

कथा सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने

0: पहलू हैं। फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहाँ आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है। और हम ऐसी चीज़ों पर बातचीत करेंगे
0: जी
1: जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ,
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ,
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद,
0: हाँ,
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ,
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवघन उसका ये था फाइट कंपोजर, एक्शन सीक्वेंस
0: जी,
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं।
0: ओहो,
1: और उन्होंने तो यहां तक किया था कि बॉम्बे में कुलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से।
0: हाँ,
1: वो तो उन्होंने अपना इससे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते।
0: अच्छा,
1: जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: स्टंट किया करते थे, पूरा
1: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता।
0: हाँ,
1: बाकी खुद कर लेते थे सब। और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह,
0: हाँ,
1: उसमें
0: हाँ,
1: कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
0: जी,
1: और एक आई थी हमराई, रामानंद सागर की
0: जी।
1: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन जागीदार
0: जी,
1: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर।
0: हाँ,
1: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
0: जी जी
1: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर।
0: अच्छा,
1: मतलब 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा।
0: हाँ,
1: ब्रिज तो आपको मालूम है, छोटे नाले पर रहते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में।
0: ओहो,
1: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना
0: जी,
1: तीनों के चेस, तीनों भी क्रॉस करते पूरा।
0: अच्छा,
1: जंप करके। तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है, तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
0: जी। तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना,
1: हाँ,
0: ये कितना मुश्किल काम होता था?
1: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर।
0: अच्छा,
1: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट।
0: अच्छा,
1: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया।
0: अच्छा,
1: हीरो उधर से आ रहा है, विलन
0: हाँ,
1: इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो।
0: अच्छा,
1: कट में।
0: हाँ,
1: तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया उधर, उसने ड्रू किया, फिर इसने देखा,
0: हाँ,
1: उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते। ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है,
0: जी,
1: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में।
0: हाँ,
1: फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे। ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं।
0: हाँ,
1: और उसको असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका,
0: हाँ,
1: जो इम्पैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे,
0: हाँ,
1: इधर गिरेंगे, उधर गिरेंगे।

0: रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए, ये तो अच्छा। अपना कहानी में हो गया
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: शूट कर लेते
1: हाँ।
0: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भाई काट दो, तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
1: अच्छा।

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे, तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था,
1: हाँ
0: उसका था। और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल।
1: अच्छा,
0: तो वो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंचे रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो
1: हाँ
0: लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक क्लोज में फेस के ऊपर भीष्म कीर दिया,
1: अच्छा
0: तो वो अलग शॉट रहता था। फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते,
1: हाँ
0: मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको।
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेदर के साथ में,
1: जी
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल,
1: जी जी
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी,
1: मराठी फिल्म
0: मराठी फिल्म।
1: जी।
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर। तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाए डायरेक्टर ने,
1: जी
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे। अनित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे वो,
1: जी
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे,
1: जी
0: तो उनको तो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी,
1: जी
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक 1 नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में खत्म हो जाता था।
1: अच्छा
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ, खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉट है,
1: अच्छा
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे। मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता, तो प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 को मार्च को खत्म किया,
1: हाँ
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए, क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है कहाँ खत्म करना है,
1: हाँ
0: बाकी तो सब था। और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे, तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, वो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं,
1: अच्छा
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा, तो कार्यक्रम के इस मोड पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ,
1: हाँ जी,
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है हर
1: जी
0: एक का, लड़की का भी रहता है, लड़के लड़के को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगनी है,
1: हाँ
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: अच्छे मिले तो हमेशा सपने में सोचते रहते हैं।
1: हाँ
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू, ये
1: क्या बात,
0: जिंदगी पिक्चर का गाना है,
1: जी जी
0: राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का,
1: हाँ
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था,
1: अच्छा,
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं, तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है?
1: सर, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है,
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ,
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा।
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है,
0: हाँ हाँ,
1: जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है।
0: ओके।
1: तो उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर।
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो
1: वो हमारा पूरा जो है ना,
0: हाँ हाँ,
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ,
1: वो सारे का एक फेडरेशन है।
0: अच्छा।
1: वो उड़ा जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का IFDA, IFDA इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन, WICA कैमरामैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं?
1: नहीं, हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं
0: जी,
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ,
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है आपको।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई ये पिक्चर का एडिटर मैं हूँ, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था।
0: अच्छा।
1: तो एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा।
1: तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ,
0: जी,
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
0: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही।
1: हाँ।
0: जी जी जी जी,
1: 78 में जुड़ा था।
0: हाँ।
1: जो मेरा राजश्री में एक साल पूरा हो गया था,
0: हाँ,
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था। तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में ₹25 में हमको भर के कार्ड मिलता था।
0: जी।
1: तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे।
0: अच्छा।
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, क्योंकि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल,
0: हाँ,
1: वो नहीं था। तो वो हम दिखाते थे, हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में।
0: जी।
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था। तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे ₹251 लिए थे।
0: अच्छा।
1: एसोसिएशन ने
0: जी,
1: जो कि उनको लेते हैं, सब एसोसिएशन में मेंबर बना लेने आते हैं। तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA, जो आप बोले ना,
0: हाँ, AFE लिखा होता है,
1: AFE लिखा रहता है।
0: हाँ,
1: तो वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है।
0: जी जी जी।
1: तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं ये।
0: अच्छा।
1: और एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ,
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है।
0: हाँ,
1: जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था। तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था।
0: अच्छा।
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है। तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए, यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोक,
0: जी,
1: प्यार के साथ में नोक झोक जो होना जरूरी है।
0: हाँ,
1: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं।
0: अच्छा।
1: हमारी लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे, तो रूठी रहती थी। तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवा मोहब्बत पिक्चर का,
0: हाँ,
1: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

चलो अच्छा हुआ उलझन, दिलों की रंग ले आई। खुशी आंखों में चमकी है, हंसी होठों पे लहराई।

0: रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
1: दिलीप जी, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
2: जी।
1: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
2: जी सर।
1: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा।
2: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
1: हाँ,
2: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
1: हाँ,
2: तुम काम कर दे, हमको मालूम नहीं।
1: अच्छा।
2: फिर क्या पैसा लेना है ले ले, ये कर ले।
1: अच्छा।
2: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे।
1: अच्छा।
2: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया। तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए, कैमरे में चिप्स आ गया। जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
1: जी,
2: वो मैंने बनाई है माताजी के नाम से, मूसा माता के नाम से
1: जी।
2: तो मैंने भी क्या क्या कैमरा लिया।
1: अच्छा।
2: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
1: जी,
2: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें।
1: अच्छा।
2: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल,
1: हाँ,
2: वो हम फिल्म मशीन आते हैं FCP बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं।
1: अच्छा।
2: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है अभी।
1: अच्छा।
2: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी,
1: हाँ,
2: तो कैमरे में फूजी कलर, ईस्टमन कलर, ओलो कलर रील आते थे
1: जी,
2: 400 फीट के।
1: हाँ।
2: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके लिए प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव,
1: हाँ,
2: नेगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए। डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे।
1: अच्छा।
2: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था।
1: अच्छा।
2: नेगेटिव उधर ही रहता था।
1: हाँ।
2: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, 1/2 take 1 ऐसा करके आता था आवाज
1: जी, जी, जी।
2: तो वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है,
1: हाँ,
2: वो मैच करते थे तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
2: फिर वो क्या सब असेंबल होने के बाद है ना,
1: हाँ,
2: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस है, जो हमारा डायलॉग है,
1: हाँ,
2: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल लेते थे।
1: अच्छा।
2: और उसका फिर रील बनता था। रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है,
1: हाँ,
2: सब होता था। फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर
1: जी,
2: तो वो होता था। अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर।
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है, तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
2: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे
1: जी,
2: तो पॉजिटिव

0: काट लेते थे पॉजिटिव, मतलब जो हम ना एडिटिंग हो गया
1: जी
0: उसके बाद में उस वो पिक्चर का वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया। तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे उसका।
1: अच्छा
0: डबिंग करते थे तो उसका ट्रैक आता था जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम, वो आता था। फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे,
1: अच्छा
0: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो 25 हो कोई भी हो, हीरो हीरोइन लॉ अपना विलन हीरोइन की माँ सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का।
1: अच्छा
0: फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे और हीरो चलते हुए आ रहा है टक टक टक
1: हाँ
0: टक,
1: हाँ
0: ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको
1: अच्छा
0: डबिंग की तरह,
1: हाँ
0: और वो सब डालते थे। जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग ला के देता था, हम काट के उसको डाल देते थे। तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी जी
0: अलग सा, उसमें दो तीन ट्रैक बनने का था, ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल,
1: अच्छा
0: ये सब असेंबल होता था। और जो म्यूजिक वाले रहते थे जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का,
1: जी
0: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक,
1: अच्छा
0: जैसा ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे, वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे,
1: जी
0: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए कोई देते नहीं थे,
1: जी
0: जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी
0: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था।
1: जी
0: बहुत सारे लोग आए भी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था। तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक
1: जी
0: पफ बब ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा, और म्यूजिक का भी ऐसा होता था साउंड का, वो सब बोलते थे उसको।
1: जी
0: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज़ के,
1: हाँ हाँ
0: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे
1: जी
0: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुस्ता ने में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था,
1: अच्छा
0: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे।
1: जी
0: उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके,
1: हाँ
0: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है। तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है,
1: हाँ
0: तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, ये तो आपने पैसे हमने आपको दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो, जो कि
1: अच्छा
0: फॉरेन पिक्चर में आता है।
1: हाँ
0: जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है
1: हाँ
0: डेविड नाम है, डेविड पॉल
1: अच्छा
0: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग, तो वो हम देखे थे। तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो, और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे,
1: जी
0: नाम
1: जी
0: से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे कि
1: हाँ
0: भाई, जैसा अभी कोई आया हमारे दोस्तों को बोलते थे यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से,
1: अच्छा
0: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे।
1: जी
0: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में,
1: हाँ
0: और हमारा जो कॉलेज थे मैं जहाँ पर पढ़ता था
1: अच्छा
0: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे,
1: हाँ
0: और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से।
1: हाँ
0: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे कॉलेज के फ्रेंड थे वो
1: जी
0: पिक्चर देख रहे थे,
1: हाँ
0: उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में और
1: हाँ
0: बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे जो दोस्त लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि
1: वाह
0: एक छोटे से कस्बे का लड़का, मतलब ज़्यादा एजुकेटर पढ़ा नहीं है,
1: हाँ जी
0: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया, वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे स्क्रीन रहते थे, दो
1: हाँ
0: सौ 300-400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे, उन्होंने नाम पढ़ लिए भागते हुए गए। फिर
1: हाँ
0: उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे अरे अपने दिलीप का नाम है, चलो
1: जी
0: पिक्चर हमको
1: जी
0: फ्री में पिक्चर रहती थी उसमें।
1: जी जी तो ये आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: सर गाने तो अपना भंडार है,
1: जी
0: हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है, अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा, मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है, कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया, ऐसा गाना है।
1: हाँ जी,
0: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, भोपाल इसकी लोक गायिका है बिहार की।
1: जी,
0: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे।
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी।
0: अच्छा,
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है?
0: हाँ,
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवस है
0: जी,
1: इंटरनेशनल लेवल पर है
0: जी जी
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं
0: जी,
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है। मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी,
1: बाकी सबका क्या है लिमिट रहता है, क्योंकि तो उनका एग्जीबिशन ज़्यादा नहीं रहता है ना।
0: हाँ जी,
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ,
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर ज़्यादातर वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है, मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है।
0: अच्छा,
1: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज़्यादा चलता है, तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
0: अच्छा,
1: तो उनका क्या रहता है कि फ़र्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है, फास्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका, तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है।
0: अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमाटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं, आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशक?
1: अभी क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है या सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है
0: जी,
1: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं,
0: हाँ जी,
1: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए
0: जी,
1: जैसा हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते तो निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे वो, तो उतना अपना चला उनका। ऋषिकेश मुखर्जी तो आर्ट फिल्म से तरफ ज़रा झुकाव था उनका
0: जी,
1: और बनाते थे अच्छे पिक्चरें, जैसे डेविड धवन है कमर्शियल में सक्सेस हो गए, यन चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए, तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है कि अभी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है
0: जी,
1: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है जो दरक परिवार,
0: अच्छा,
1: दरक परिवार यानी जो हम महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने हमारी कुलदेवी है एक मूसा माता
0: जी,
1: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी कुलदेवी ढूंढो, तो हम राजस्थान बहुत बार गए मगर उसमें हमको किधर नहीं मिली वो।
0: अच्छा,
1: तो हम एक दिन हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में,
0: अच्छा,
1: मूसा माता का,

0: तो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया
1: जी जी।
0: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया मैं, माता जी का सपरिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वहां से कल्पना आई, मगर वो अभी क्या था कि सब चीजें असेंबल करना पॉसिबिलिटी नहीं थी
1: जी।
0: हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था। तो हमने क्या किया, सारा थोड़ा बहुत माहिती लेकर मतलब जो भी है अपना सब उनका सब हमने इकट्ठा किया
1: जी,
0: उनके बारे में
1: जानकारी
0: ली
1: जी,
0: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया।
1: अच्छा,
0: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एमएक्स पर शूट किया
1: जी,
0: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है। और वो शॉर्ट फिल्म है।
1: अच्छा,
0: तो वो हमने किया है। और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे। इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किया है।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया। तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए। तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में, अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाया है और ये करते रहेंगे
1: जी।
0: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का।
1: हाँ जी।
0: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
1: हाँ,
0: ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता
1: जी जी जी
0: मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे।
1: अच्छा,
0: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे, क्यों? तो लोगों का सोच अलग हो गया है,
1: जी,
0: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते, थिंकिंग बड़ी हो गई।
1: हाँ,
0: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना दिया के पर आंचलिक उपन्यास था
1: जी,
0: एक पिक्चर आई थी सौराट, तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है वो पिक्चर, ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है,
1: हाँ,
0: उसमें शूट किया है वो पिक्चर में। एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने,
1: हाँ,
0: कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ
1: जी,
0: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया। तो क्या रहता है कि अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया।
1: अच्छा,
0: कि तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ABC पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे भी पिक्चर बिक जाती थी। मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गए, अभी कॉरपोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है। तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था।
1: अच्छा जी,
0: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, प्रोड्यूसर ने पहला नीलानी ने किया
1: जी।
0: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे,
1: अच्छा,
0: पिक्चर चलती थी। अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे।
1: हाँ,
0: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा है, माहौल ऐसा है।
1: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
0: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो,
1: हाँ,
0: मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है,
1: हाँ,
0: उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में
1: जी,
0: उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते थे, बोले क्यों देखा उसको। तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी, और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर।
1: अच्छा,
0: तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था, कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कहे दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, बोल के मैं भागते हुए नीचे आ गया। मुझे लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे।
1: अच्छा अच्छा
0: तो वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था। तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गया क्या, कुछ नहीं बोले, वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना
1: क्या बात है। तो वही गीत सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए, हमारे श्रोताओं को बताएं। आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला, और बहुत मैं आज खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा सम्मान
0: जी,
1: इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है, उसमें पहले बोला जाता था कि अभी ये गीत सुनिए, गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन है, लिरिक्स ये है, ये गाना है।
0: अच्छा,
1: तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आपका ये कारवा जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुरेश वाडेकर और चंद्राणी मुखर्जी की मिलीजुली आवाज़ों में अभी आइए सुनते हैं दुर्गा माँ फिल्म से ये भजन संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

दशावतार इस फिल्म में, आइए अब सुनते हैं के वासाथियों को। संगीत दिया है आनंद कुरेकर ने।

अभी आप सुन रहे थे कृष्णावा साथियों के गाया हुआ ये भजन जुगाड़ फिल्म से। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:23 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। हर रोज़ की ही तरह आज भी हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम युवा मंच, लेकर आज के विषय के साथ साथ करेंगे हम आपका मनोरंजन भी। तो कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं हम इस गीत के साथ।

जी कार्यक्रम है युवा मंच, और आज के युवा मंच कार्यक्रम में हम बात करेंगे मीडिया की आज़ादी और जानकारी, सोशल मीडिया बनाम वर्तमान मीडिया, इस विषय पर। युवा मंच कार्यक्रम में जहां बात होती है आपके विचारों की, आपके भविष्य की। युवा दोस्तों, अब हम बात करेंगे युवाओं और मीडिया का रिश्ता। दोस्तों, आज का युवा सबसे ज़्यादा जुड़ा है मीडिया से। सुबह उठते ही मोबाइल और रात को सोने से पहले तक हम लगातार खबरों, पोस्ट और वीडियो से घिरे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो हम देख रहे हैं क्या वह पूरी सच्चाई है? अब बात की जाए कि मीडिया की आज़ादी क्यों ज़रूरी है। मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र की नींव है। अगर मीडिया स्वतंत्र होगा तभी सच सामने आएगा, गलत पर सवाल उठेंगे और समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन जब किसी भी तरह का दबाव राजनीतिक या आर्थिक मीडिया पर हावी होता है तो सच्चाई कहीं ना कहीं दब जाती है। पारंपरिक मीडिया जैसे टीवी, अखबार, रेडियो वर्षों से विश्वसनीय स्रोत खबरों की जांच पड़ताल के बाद प्रसारण, लेकिन कभी कभी सीमित दृष्टिकोण या देरी। सोशल मीडिया आपका अपना मंच है। आज हर युवा एक कंटेंट क्रिएटर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमें अपनी आवाज़ रखने की ताकत दी है।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत हमारे युवा दोस्तों का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मीडिया की आज़ादी और जिम्मेदारी, सोशल मीडिया बनाम वर्तमान मीडिया। जी हाँ, इस विषय पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। युवा दोस्तों, आज सबसे बड़ी चुनौती है सही और गलत जानकारी में फ़र्क करना। एक छोटी सी गलत खबर समाज में डर, नफरत और भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम स्मार्ट यूज़र बने, सिर्फ स्क्रॉल करने वाले यूज़र नहीं। अब बात आती है कि जिम्मेदार युवा कैसे बने। जी हाँ, किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करें, विश्वसनीय स्रोतों को ही फॉलो करें, भावनाओं में बहकर कोई पोस्ट आगे ना बढ़ाएं, सकारात्मक और सच्ची जानकारी फैलाएं। याद रखिए, आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि समाज के निर्माता भी हैं।

अगर आप सही जानकारी को बढ़ावा देंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। तो आइए एक जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त युवा बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला सुनील कुमार से। अब अपनी रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया को दीजिए अनुमति। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सदाबहार संगीत। शाम 6:30 पर कार्यक्रम मुजंगराइंदियां कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय रहेगा जल स्रोतों की देखभाल। और शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। विषय रहेगा फूलों की खेती बाड़ी को कैसे बनाएं फायदेमंद। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशगान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम दर्शन रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 से 11:00 तक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ बात होगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व हास्य दिवस और रमणीक स्थल शोजा के बारे में बात होगी और पर्यावरण में सूरजमुखी पुष्प के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। बच्चों के कार्यक्रम बाल सभा में विषय रहेगा विश्व हास्य दिवस, बच्चों को बताएं खुलकर हंसने के फायदे और साथ ही होंगी रोचक जानकारियां भी। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। इन चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को की जाएगी। इसके बाद 6 मई को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर उन्हें चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। नगर निकायों के लिए मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा और इसी दिन शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज 24 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कुल मिलाकर 3 दिनों में 58 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। उपमंडल निर्वाचन अधिकारी मोहित रतन के अनुसार 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नगर निगम के लिए मतदान 17 मई को होगा। सिरमौर जिला में नगर निकाय चुनावों के लिए 92 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नाहन नगर परिषद के लिए कुल 31, पांवटा साहिब नगर परिषद के लिए 40, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ के लिए 21 नामांकन दर्ज हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि 4 मई को नामांकन की जाँच की जाएगी, जबकि 6 मई तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे।
1: जिला सिरमौर में टोटल हमारे 92 नॉमिनेशंस हैं, जो 3 हमारे यूएलबी सीट्स हैं वहाँ पे फाइल हुए हैं। इसमें जो हमारा 13 वार्ड है एमसी नाहन के, 13 है पौंटा के और 7 वार्ड एनपी राजगढ़। जैसे आज अंतिम तारीख थी नॉमिनेशन फाइल होने की और मंडे को यानी 4 मई को स्क्रूटिनी की जाएगी। स्क्रूटिनी में हमें पता चल जाएगा जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं किसके कागज ठीक है किसके ठीक नहीं है। उसके बाद विड्रॉल की तिथि हमारी 6 मई की है, तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना जो नामांकन है उसको विड्रॉ करना है वो 3 बजे से पहले पहले नामांकन विड्रॉ कर।
0: विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के रामपुर खनेरी नर्सिंग संस्थान व अस्पताल में 20% नर्सिंग छात्राओं के टीबी संक्रमित होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन छात्राओं के टीबी संक्रमित होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम ना उठाया जाना अत्यंत शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दशकों से चल रही इस लड़ाई में जहां केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भरपूर सहयोग दे रही है, वहीं प्रदेश स्तर पर इस मामले में भारी लापरवाही सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन अभियान एक स्वस्थ व बेहतर कल का अभियान है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नगर निगमों, पंचायतों और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सभी को पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए कार्य करना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी है, ऐसे में पार्टी मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे आना होगा। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नव निर्माण में डॉक्टर परमार का उल्लेखनीय योगदान है और हिमाचल कभी भी उनके इस ऋण को नहीं चुका सकता। विनय कुमार ने कहा कि डॉक्टर परमार के अथक प्रयासों से ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा भी इस दौरान मौजूद रहे। सिरमौर कल्याण मंच सोलन ने भी डॉक्टर परमार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में वर्षा व ओलावृष्टि का क्रम जारी है। राजधानी शिमला सहित कई अन्य स्थानों पर दोपहर बाद अंधड़ के साथ वर्षा व ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से फसलों और फलदार पौधों को नुकसान हुआ है।

0: असम के इस मिजाज से दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर जिला में गोविंद सागर झील और कोल डैम में जल गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई नौका दुर्घटना के मामले को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार द्वारा जारी इन निर्देशों का पालन करना सभी संचालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश भर में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा कल 3 मई को ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अलावा संबंधित जिला प्रशासन की ओर से भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार संगीत।

सभी दोस्तों को रेनू मनकोटिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अर्पण फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर व साथियों ने, और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बोल हैं आनंद बख्शी के।

ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की। जीवन एक संघर्ष, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। सदाबहार संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया के साथ। यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

सदा सुहागन इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

ये संगीत है नदीम श्रवण का। साजन की बाहों में इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

ये संगीत है आनंद मिलिंद का, बोल समीर के, आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। वंश फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और ये है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गीत के साथ आज का सदाबहार संगीत यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारे श्रोतियां जो किसान मित्र दी संझ दी इस वेला टियाले ते दो हथ जोड़ी के राम राम। कने किसान साथियों अज चंचलो जी मेरे सोगी हैं टियाले पर, राम राम जी।
1: राम राम किसान मित्र जी, कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों जो मेरी तरफ ते भी प्यार भरे नमस्ते, राम राम
0: जी। तो चंचलो जी दिखा टियाले पर ता दिखा ठंड लगना शुरू हुई है ना।
1: हाँ जी,
0: कहे कि दिखा थोड़ी देर पहले एच जड़ी से बड़ी भरी बरखा कना जिसी बोल देना से आन छनाट पे है ना।
1: बिल्कुल दिखा पता नहीं चला था मौसम दा ना। हाँ। कालू धूप लगी पो दी, कालू गर्मी लग पो दी, कने कालू बरखा जड़ी से शुरू हुई आ दी।
0: जी हाँ जी, कहना दिखा इना दिना हाँ दे जड़े किसान है ना से भी जड़े से अपने खेतरा बीच है निस बेले है ना।
1: हाँ जी,
0: कहना जी जी बदल जल अंबर गड़ाकिया मारा करता था दिखा किसान साथी जड़े थोड़े जिसी बोलते ना चिंतित हो या करते हैं ना, कहना फटोफट जड़ा सा अपने कम्मा जो कड्डा करते हैं ना।
1: बिल्कुल तो ठीक बोलिया, कही कि दिखा इस समय तो हाँ दे किसान भाइयों वैसे भी निंदर नहीं है, कही कि दिन अति हूँ दिखा कुछ है कहाँ दे किसान भाई था कणक बड्डी बुढ़ी के जड़े पेड़ वच पाए बैठे ना
0: निचले इलाकियां देखने। हाँ बढ़ाई जड़ी से पलमा वाले पहा जड़ी से हुन पुजी हो
1: पुजी है। हाँ। बोलते भी है ना कि जालू तक हाँ दे किसान भाइयों के दाने जड़े से पेड़ वच नहीं पे हैं तो तालू तक दिन निंदर भी नहीं होंगे ना।
0: हाँ बिल्कुल हाँ जी,
1: कने इस दे सोगी दिखा मौसम भी बड़ा सारा डरा दा, पर यह कि हाँ दे किसान भाई जड़े से काफी समझदार हैं, काफी जागरूक हैं, से कुसी ना कुसी हिसाबे जड़े से अपना काम करी लैंदे हैं।
0: जी हाँ जी, कने हाँ हुण जिहड़ी गल सांझा करनी है अपने श्रोतियां सोगी से ये करनी कि दिखा पानी दी गल जड़ी से बरखा दी हाँ करा कर दे।
1: हाँ जी,
0: अहां दे जितने भी पानी दे स्रोत जड़े हैं उन्हां दी देखभाल कने उन्हां दी साफ सफाई जड़ा से अहां दा एक नैतिक जिम्मा बनता है।
1: जी तो बिल्कुल ठीक बोले, कही कि अगर अहां दे जल स्रोत जड़े से साफ सुथरे होंगे अच्छे होंगे ता ही जड़ा से अहां अपना जीवन भी जी सकते, कही कि बोलते ना जल ही जीवन है।
0: हाँ कने जितनी भी दिखा अहां दे आस पड़ोस ग्राएं विच कुथी भी जड़े पानी दे कोई कुएं हैं या अहां दी जड़ी पानी दी बोड़ियां हैं
1: तालाब हैं।
0: हाँ दिखा जितना भी पानी दा जड़े जड़े स्रोत हैं इन्हां दी इन्हां दिनां दिखा हाँ जो साफ सफाई करने दी बड़ी एक जड़ी से जरूरत होंदी है ना।
1: जी जी
0: सवाली जड़ी से बड़ी पानी विच फैली जांदी उपर ते दिखा पिछे जियां पतझड़ ही दा पत्ते वगैरह बड़े रुखां दे रड़ी के तां तू पे ही होंदे ने।
1: हाँ जी,
0: तां सह भी जड़ा सा जलू अहां दे जड़े पानी पीने दे स्रोत हैं ये साफ सुथरे होंगे दिखा कितना ठंडा पानी पीने का कितना आनंद आंदा है।
1: हाँ जी दिखा गर्मियों के मौसम च तो पैसे भी दिखा ग्राएं च

0: थल्ली भी है ना जित्थू भी आंदी बोड़ियां वगैरह तो संझा दे जालू सांझ होंदी तो लगता कि भी तित्थू घड़ा लेके जाइए ना ठंडा ठंडा पानी जेड़ा से लियाइए। कन्ने वैसे भी बोलते कि बोड़िया दा पानी जेड़ा होंदा से काफी मतलब फायदेमंद भी होंदा है ना।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद होंदा। कन्नै ए जिसी अहां बोली सकदे कि पाचन शक्ति जो मजबूत बनाने विच जितने भी अहां दे पानी दे जड़े ए मिठे पानी दे जितने भी झरने हैं स्रोत हैं ये पानी अहां जो जरूर पीना चाहिदा।
0: हाँ जी कने एक बड़ी खरी गल है दिखा किसान मित्र जी कि हाँ दी बोड़ियाँ होंदियाँ ना ये जड़े झरने वगैरह जड़े पानी चलता ये जड़े हाँ दे प्राकृतिक स्रोत न ये पूरे फ्रिजे का कम करते ना।
1: कम कर दे। हाँ जी
0: हाँ कने फ्रिजा का पानी पीते हाँ तो कई बार हाँ गला भी खराब हो जाता कई कई तरह दियाँ बीमारियां लगदियाँ हाँ जो जियाँ क्या फ्रिजा का ज़्यादा पानी पीते पर इन बोड़ियाँ का पानी अगर हाँ पीन तो हाँ जो होर प्यास लगती कि होर पानी हाँ पीन है ना।
1: हाँ दिखा अगर गल करिए ना हाँ दे अगर हाँ हिमाचल दी गल करिए पूरे दी या कांगड़े दी कर लीजिए ना
0: हाँ जी
1: तो हर दिखा थोड़े दे इस दूरी ते बाद कुते ना कुते जेड़े से पानी दी एक जेड़ी से बाह होंगी
0: जी
1: है
0: हाँ
1: ना
0: जी
1: कुते ना कुते जेड़ा सा छरूड़ू जेड़ा बगिया होना है
0: हाँ
1: ठंडे
0: जी हाँ
1: पानी
0: जी
1: दा
0: हाँ जी
1: इन्हां दिनां दिखा पर्यटक बड़े फरी जेड़े से हिमाचल दी तरफ रुख करा करते
0: कर
1: हैं।
0: देन हाँ
1: कहना
0: जी
1: जित्थू सह दिखते हैं कि कुछ इतना साफ झरूड़ू का पानी जड़ा सह
0: ठंडा
1: पोवा
0: ठंडा
1: करा तो
0: हाँ
1: सह
0: जी
1: रुकते हैं कहना एन अपनी पानी पीने वाली बोतलों वगैरह भरते हैं फिर सह अगे जड़ा सह निकलते हैं ना
0: हाँ
1: क्योंकि
0: जी
1: ये भी कुदरत दी जड़ी सह चीज़ें ने दिखने का एक जड़ा सह चा लगता।
0: दिखने भी अच्छी लगती है कने मने भी बड़ी खुशी मिलती ना कने
1: हाँ
0: पानी दी तहां गल ही क्या बोलना है ना।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: इस करके हाँ दा हाँ सारे का फर्ज बनता है कि जेड़े भी प्राकृतिक स्रोत हैं इन्हों सारे जो सांझो संजोई के रखना चाहिए इन्हों की साफ सफाई जी हाँ जो जरूर करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल आजकल चंचलो जी घर घर जरे सह नलके जड़े सह लगी हुए
0: लगी
1: है
0: गए हाँ
1: ना
0: जी
1: इस वजह कन्नै भी कई कई दिन अहाँ जो जन्दे कि अहाँ दी बोड़ी भी है धुते धुते पानी लियोइए अहाँ जो अपनी ये एक जिसकी अहाँ बोलते ना दिनचर्या च शामिल करना चाहिए कि अहाँ बोड़ी का पानी जड़ा सा थोड़ा बहुत जरूर प्रयोग चलाइए पीने हो ना
0: जी
1: अगर हाँ ज़्यादा नहीं आनी सकते हैं ना तो देखा जालू हाँ जो अपनिया बोड़ियाँ दी कुएं दी याद पता कल होंगी जलू कुसा बारी जालू पानी नहीं ना आता या
0: नलके च पानी नहीं
1: हाँ
0: होता
1: कई
0: हाँ
1: बार
0: जी
1: खराबी भी आई जाती कई कई दिन तलू अहाँ दौड़ते घड़ोलू वाले कि बोड़िए ना
0: हाँ
1: कहना
0: जी
1: फिर गांह जाइए के दिखते तो वो दिखते पानी तो बड़ा गंदा है पीने थोड़ा इं लगा पता नहीं कि पीएंगे तो तिसा ही गल्ला ये जड़ियाँ भी अहाँ दियाँ प्राचीन अहाँ दियाँ धरोहर हैं अहाँ दें बजुर्गों में दिखा इन्हें पानी के स्रोतों से पानी भरी के जड़ा से अपना जीवन कने जड़ा से तिना कट्टिया अहाँ जो भी जिस भी तिना जड़ा से पालिया ना
0: हाँ जी
1: अच्छा तो दिखा नलके लगी खूब पानी ओवा करता लेकिन पहले नलके वगैरह कुछ समझ नहीं आते हे पानी की कमी होंगी ही तो इन्होंने सारे स्रोतों से पानी जड़ा से भरते हे।
0: पढ़ते थे कने अहाँ दा ता मैं तो बोलती कि अहाँ दा ये भी फर्ज बनता कि हाँ अपने बच्चे भी दसीए ना कि भी इन्हां बोड़ियां दी सांझो जड़ी भी बोड़ियां तालाब वगैरह नहीं हुंदी साफ सफाई जड़ी से हाँ जो करना चाहिए। कने कई बारी तो हाँ क्या करते कि जड़े तालाब वगैरह होंदी नदियां वगैरह होंदी अहाँ दा घरे दा ही जड़ा कूड़ा वगैरह चुकते कने तित्थू फेंकी दें ना
1: हाँ
0: तो ये भी यहाँ जो नहीं करना चाहिए क्योंकि तित्थू भी कितने बारी जीव जंतु होंगे।
1: कहना आजकल चंचलो जी लगभग तकरीबन सारी ही जितनी यहाँ दी बौबड़ियाँ ही या कुएं है ये पक्के हुई हो
0: हाँ जी
1: बढ़िया इन्हें जो जाने उने जो रस्ते बनी हो लेकिन अगर हाँ पहले की गल करिए तो स कुआलू लोही के जाना पौंदा हाँ पत्थर वाले इस चफरोले रस्ते होंगे एक ना किसान भैना जेड़ा सा डरी डरी जेड़ा सा घड़ोलू सिरे पर रखे होना कि कुछ पैर खिसका कहना घड़ा ना भजी आता घरें भी गाली पौनी है कि तुम पानी है कि कहना घड़े पर निकले आए ना
0: हाँ ता इस
1: हाँ
0: करके जेड़ा ऐसा है हाँ जो आजकल तो सुविधा भी बड़ी है ना ता
1: आजकल तो
0: हाँ
1: देखा
0: जी
1: पक्के पक्के बर्तन आई है ना
0: हाँ जी
1: प्लास्टिक दे आई है कोई सिल्वर दे स्टील दे लेकिन उस जमाने में जड़ा सा ज्यादा मिट्टी दे बर्तन होंगे।
0: बर्तन कने
1: हाँ
0: बोलते भी है ना कि मिट्टी के जड़े बर्तन ता तिस जड़ा है मतलब कि हाँ दी तिसने सेहत खरी रहती कने पानी जो से आपू ही साफ करता रहता ना।
1: हाँ जी जी अगर हूँ दिखा भी बैसाखी के बाद अहाँ भी दिखिया कि जगह जगह जड़े से अहाँ दे किसान साथियाँ अहाँ दे श्रोतियाँ दूर दूर जड़े से प्राणी पानी के जड़े से भरो लगाए टियालियाँ पर है ना
0: हाँ जी
1: ताकि चलते हंडते दिखा अजकल त्रै लगती घड़ी दो पल अहाँ झल था जिसकी अहाँ बोलते ना इं कि गड़ा सुकी गया था जगह जगह पानी जड़ा से मिली
0: मिली
1: जाता
0: जाता
1: रखे होंगे
0: पीने
1: पीने है ना
0: हाँ जी तो
1: जी
0: इसने दो फायदे हो जाते एक तो रखने वाले का धर्म ही हो जाता कने दूए की
1: हाँ
0: प्यास भी मिटी आती ना
1: जी
0: तो इस दे सोगी

0: दिक्खा किसान मित्र जी, किसान भैना किसान भाई हां दे कम करके थकी भी रहे होंगे,
1: हाँ
0: ता तेना दा मनोरंजन करवाना भी हां दा फर्ज बनता है, ता सुनांदे तेना जो एक प्यारे दे लोक गीत।
1: जी।

0: जी किसान भाइयों, ता तो हाँ सुने है प्यार दया लोक गीत कन्ने उम्मीद है कि दिन भर दी थकावट जड़ी से थोड़ी मती कटी होनी है।
1: बिल्कुल हाँ जी, अगर जेड़े यहाँ दे किसान साथी इस वेले खेतरा विच हैं ना, उन्हां दी डाटी जो भी जेड़े से रफ्तार कणका दी बढ़ाई है सै मिली होनी है ना
0: हाँ जी
1: जी। ता दिखा इस ते बाद अहाँ गल करनी है जड़ियाँ अहाँ दियाँ अनुमोदित किस्म है ना, उन्नत किस्म उन्नत बीज
0: हाँ जी
1: जी। तो चंचलो जी दिखा इन दिना अहाँ दे किसान साथियों की मुख्य फसल कणका दी जड़ी सै कटोई की जड़ी सै कटाई लई वादे आधे तैयारियां करा करते हैं ना, कुथी हली जड़ सै कटने की तैयारी होवा करती है।
0: हाँ जी
1: तो इन दिना जित जितू अहाँ जो लगता जी अहाँ कुथी उन्नत किस्म लगाई हुई एक बांका बीज अहाँ विभाग से ले के जड़ा सै बीज हा कने फसल अहाँ दी जितू अहाँ लगा करदा कि इन्हें ना खेतर के जड़ी सै कणक जड़ी सै बड़ी बांकी है। तो इन दिना अगर अहाँ थोड़ा दिया जड़ा सै ध्यान रखन तो अहाँ बीज जड़ा सै छंटाई एक बढ़िया पुताइया कर सकते हैं ना।
0: हाँ जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोलिया गई कि
1: हाँ जी हाँ जी, कने दिखा भी इसते ये सोगी हाँ जो फायदा चंचलो जी ये होना ना कि क्या होना कि जल्लू अहाँ क्या कर दे कि अगर अहाँ थोड़ा देर ध्यान रखन जियाँ हमें पहले भी दस्या कि बीज जो जड़ा हाँ छांट लैन कई बार क्या होंगे कि जियाँ तो उपरे ते जड़ा सा मौसम जल्लू अहाँ जो डरांदा है या हाँ अहाँ जो बड़ा काम पे होंगे तो अहाँ जड़ी सा अहाँ सब कुछ जड़ा सा सारी फसल जो इकट्ठा ही करी देते हैं
0: हाँ
1: ना
0: जी तौल
1: ते
0: तौल कर देने
1: हाँ
0: की
1: भी जल सीधी थ्रैशिंग हो यानी सह पूरा अनाज बोरियों में इकट्ठा हो जाता तो फिर छंटाई जड़ा सा करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना।
0: हाँ जी
1: तो जिन्ह जिन्ह जित जितू अहाँ जो लगता कि ये अहाँ की फसल जड़ी से बड़ी छैल है कने गां जो अहाँ ये बीज जड़ा सा रखना है तो थोड़ा उसी अलग करी लिया करे उसकी अलग थ्रैशिंग कर लिया अलग बोरियों में सह भरोई जाना ना।
0: हाँ जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोलिया क्योंकि अगर अलग रखी लेंगे तो अच्छा
1: हाँ
0: बीज ऐसे हाँ जो घर ही मिली आना ना।
1: मिली जाना हाँ जी, कन अगली बारी जड़ा सा हाँ जो बाहर ते जड़ा सा नी लैना पौना कने लंबी लंबी लाइना बिच जड़ा सा नी लगना पौना ता तू भाग दौड़ नी करना पौनी घरे दा बीज जड़ा सा मिली जाना है ना।
0: हाँ जी
1: सुन दे एक जड़ा सा और लोक गीत
0: हाँ जी

0: जी लोकगीत के बाद फिर ते किसान साथियों अगली गल करते हैं ना। तां हुण किसान साथियों जी जियां अहां दे खेत हुण खाली होआ करदे हैं ना, तां तियां तियां अहां वाल जल्लू अहां पूरे अपने फसल दे कम्मे ते वेले हो जाना है। तां थोड़े दे दिन अहां वाल राहत होंदी है। राहत तां दिखा अहां ठहरे किसान, अहां दे तां कम्म मुकदे नहीं, लेकिन थोड़ी देही टलोर अहां जो कम्मे दी मिलदी है, इन्हां दिनां अहां इक जरूरी कम्म क्या कमाना है कि अपने खेतरां दी मिट्टी दी जांच जरूर करवानी है।
1: हाँ जी, तो हाँ बिल्कुल ठीक बोलिया, क्योंकि कृषि वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि जालू भी किसानों के खेत खाली होंगे तो बड़ी आसानी होंगी तालू मिट्टिया की जाँच करवाने की। तो किसान भाइयों जो जरूर जड़े से जालू भी तिना के खेत खाली होंगे तो अपनी मिट्टिया की जाँच जड़ी से जरूर करवाई लैन।
0: हाँ, कहना दिखा हर एक जिले विच जड़ा से हर एक जिसी हाँ बोलते हैं ना ब्लॉक स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उतों जाई के अहाँ मिट्टी का जड़ा नमूना अहाँ प्रयोग वास्ते भरिया होना, उतों उन्हां वाल दे के उसके बाद हाँ जो मिट्टी की जड़ी गुणवत्ता है वो बारे च पूरा पता लगी जाना है।
1: हाँ जी
0: सह कहे चंचलो जी दिखा जियें अहाँ हूँ अपनी फसल जो कट्टा करते हैं ना, या अहाँ कट्टी के जड़ा सह वेले हुई अपने कमे से, तो अहाँ फिर आपू चाहे जड़ा सह एक गलबात साझा करते गप लगाते कि अहाँ दे इना इस जगह काफ़ी खरी जड़ी सह कणक निकली, लेकिन इस लाड़े च थोड़ी कणक
1: काट
0: घट
1: निकली। हाँ
0: निकली।
1: जी
0: तो यही वजह होंगी कि जियाँ तां कह ज़्यादा निकली पर क्या फर्क रही है, तो पोषक तत्वों की वजह कन्नै ये सारा उत्पादन च फर्क पौंदा।
1: हाँ जी, तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले, कहने जालू भी हाँ मिट्टी की जांच करवाई लेंदे तो हाँ जो

0: सारे होंगे उस खेत विच। हाँ जो ज़्यादा खाद पाने की जरूरत नहीं है,
1: नहीं होंगी। हाँ
0: जिस
1: जी
0: विच घट है ना उस जड़ा सा खाद जो जड़ा बधाना है।
1: हाँ जी
0: इससे एक फायदा था अहाँ दे किसान साथी जो अहाँ जो ये होना कि खाद पर अधिक खर्चा नहीं करना
1: नहीं
0: पौना
1: करना पौंदा
0: है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: कारण अहाँ जो पता भी लगी जाना कि कौन दे पोषक तत्व की जड़ी सह कमी है। तो इससे ये भी अहाँ जो जांच करवाने के बाद ये भी पता लगी जाना कि ये मिट्टी कौन दी फसलों वास्ते अहाँ जो जड़ी से बेहतर रहनी है।
1: जी
0: कई बार क्या होंगे कि अहाँ बार बार सही फसल अहाँ लगा करते हैं जी, धान छली कणक या सरू लगा करते हैं, ये विपरीत भी जड़ा सा मती सारिया ऐसा फसल हैं जो कि अहाँ उगा सकते हैं। तो पोषक तत्व कने मिट्टी की जाँच के बाद अहाँ जो सही मालूम जड़ा सा हो जाता कि ये जड़ी मिट्टी है एक इस फसल वास्ते है बिल्कुल फायदेमंद है।
1: हाँ जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले। तो इस करके हाँ तो टाले दे माध्यम ने बार बार किसान भाइयों दसते रहते कि किसान भाइयों तो हाँ समय पर मिट्टी की जांच करवा करने बीज और ऐसे उपचारित करके खेत लगा करने समय पर अगर कोई भी फसल लगाते हैं तो समय पर लगा करने अगेती पछेती का बिल्कुल ध्यान रखा ना कने इन्ह गलों का अगर हाँ दे किसान भाई ध्यान रखते हैं कने जागरूक हो के खेती बाड़ी कर देन तो तेनाली जो काफ़ी मुनाफा जड़े से मिलता है।
0: जी चलो जी सुन देन एक मिली के होर लोकगीत।
1: जी जी

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम दा समय इत्थों ही संपन्न होने जो है। कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह कन्ने तकनीकी सहयोग अहां दित्ता सुरेंद्र कपूर ने
1: कन्ने हुणा दुनिया दी अनुमति।
0: अच्छा जी, जय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांग राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने IPL इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. In West Bengal, re-polling was held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Nearly 87% voter turnout was recorded till 5 p.m. Polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around the counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of the vote of counting. In Chhattisgarh, 4 security personnel lost their lives and 1 personnel was injured in an IED blast near the Kanker Narayanpur district border today. The incident occurred while personnel of the District Reserve Guard, DRG, were on an operation to defuse an improvised explosive device, IED. According to police, a DRG team had been deployed for demining, area domination and search operations under the Chote Bethia police station limits. During the operation, the IED exploded while it was being defused. Inspector Sukram Vati and Constables Krishna Komra, Sanjay Garpale and Parmanand Komra were critically wounded in the blast and later succumbed to their injuries. Communications Minister Jyotiraditya Sindhya today launched the Cell Broadcast System to strengthen India's emergency communication systems and enhancing public safety infrastructure. CBS is an indigenous technology developed by the Center for Development of Telematics, CDOT, under the Department of Telecommunications in collaboration with the National Disaster Management Authority and the Ministry of Home Affairs. A nationwide test of the system was successfully conducted today, during which emergency alert messages were broadcast to mobile phones across the country. As part of it, a notification with a siren alert was sent to the mobile devices of citizens around this noon to test the system. Speaking at the launch in New Delhi, the minister called it a transformative step in India's disaster management framework, reflecting the shift from a reactive to a proactive approach in safeguarding citizens. The Ministry of Information and Broadcasting has appointed communications expert Prasoon Joshi as the chairman of Prasar Bharati, India's public service broadcaster. Mr. Joshi's work spans acclaimed film lyrics, advertising campaigns and socially resonant storytelling that connects with diverse audiences across the country. Earlier, Mr. Joshi has served as the chairperson of Central Board of Film Certification, Mumbai. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will embark on an official visit to Jamaica, Suriname and Trinidad and Tobago from today, which will continue till the 10th of this month. These countries share a special connection with India, owing to the presence of Girimitia communities. External Affairs Ministry said in a statement that during the visit, Dr. Jaishankar will meet with the leadership of the three countries. In IPL cricket, Mumbai Indians won the toss and opt to bat first against Chennai Super Kings. Match will begin in Chennai at 7:30 p.m. And in badminton, Indian men's team will take on France for a place in the finals of the Thomas Cup 2026 at Horsens in Denmark today. India advanced to the semi-finals after a dominant 3-0 win over Chinese Taipei in the quarter-finals yesterday. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: एक बार फिर ते सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई बहना सारे श्रोतियों का कार्यक्रम दे विच स्वागत करते हैं। ले करी हाजिर हैं टियाले पर कार्यक्रम किसान वाणी
1: हाँ जी
0: करना, जिन्हें किसान साथियां श्रोतियां अपने रेडियो हुणी ऑन किए हैं, तो दस दईए कि अज मैं टियाले पर तुहां दा साथी किसान मित्र करना मेरे सोगी हैं चंचलो जी।
1: जी किसान मित्र जी, तुहांदा भी एक बारी फिरी ते टियाले पर स्वागत है। कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों का भी टियाले पर फिरी ते स्वागत है। कने कार्यक्रम मैं किसान वाणी
0: जी, तो जियां कि अहां दे श्रोता जो पता है सारे हैं जो कि कार्यक्रम की शुरुआत दे विच कोई ना कोई अहां गल सांझा जरूर करदे ने ना
1: जी।
0: अज अहां गलबात अपने किसान साथियां बागवान साथियां सोगी अहां श्रोतियां कन्ने करनी है, सह ये है कि फुलां दी खेतीबाड़ी जो भी कियां अहां अपने एक रोजगार दा जिहड़ा साधन बनाई सकदे हन।
1: हां जी, कने क्या क्या फायदे उसने ले सकदे, कने कौन कौन तकनीक जड़े से अपनाई सकदे।
0: हाँ, तो जरूरी नहीं है चंचलो जी कि अहां जियां ज़्यादा खेती करन या कोई होर व्यवसाय करन, फुलां दी खेती करी के भी अहां दे मते सारे अहां दे युवा अहां दियां किसान भैणां जिहड़े से पूरे जिसी अहां बोलदे हन ना कि जगह जगह तिना जिहड़ा सा एक अपना पहचान तिना बनाई होवे, तिना जो लोग जिहड़े से फुल्लां दी जिहड़ी से पैदावार करने वाले जिहड़े से जगह जगह जानदे ने ना।
1: हाँ जी, तो आ बिल्कुल ठीक बोलिया। कने यहाँ दे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा खेतीबाड़ी दे सोगी सोगी बागवानी सोगी सोगी फुल्लां दी खेती भी करा दे, काफ़ी सारा मुनाफा भी जिहड़ा सा लिया दे।
0: हाँ, दिखा फुल्लां दी तां मांग बड़ी फरी रहिंदी
1: है, साल भर रहिंदी है,
0: बड़े घट जिहड़े से मिलते। कना जलू दिखा अहां दे घर कोई ब्याह शादी होवै तां अहां जो फुल जिहड़े से अहां सोचदे कि अहां जियां अगर ग्रां दी गल करिए ना, तां ग्रां विच तां फुल जिहड़े से मिली भी आंदे
1: हन,
0: लेकिन कई वारी ग्रां विच भी नहीं मिलदे तां अहां जो बाजारे ते लैणा पौंदे हन। जियां जलू मंदरां विच दिखा जलू धार्मिक उत्सव चलदे हन, नवरात्रे चलदे हन या कुछ भी है, तां फुल जिसी अहां बोलदे ना कि इहनां दी फुल्लां दी जियां हार बनाने या कुतै चढ़ावा चढ़ाना है, तां बड़ी मांग है फुल्लां दी।
1: जी, तो बिल्कुल ठीक बोलिया। कने अहां दे ता किसान भाई जड़े से गेंदे दी फुल्ला दी खेती करके बड़ा सारा मुनाफा जड़े से लै देन।
0: हाँ,
1: पर गल जड़े से किसान मित्र जी हटी फिरी के सह ही आई जाती कि हाँ दे किसान बागवान भाई जो थोड़ा दिया जो जड़ी भी व्यवसाय करते हैं या फिर खेती बाड़ी करते हैं, तो कुछ गल्ला का ध्यान जड़े से तेना जो जरूर रखना पौंदा ना।
0: हाँ,
1: जियां कि हाँ फुल्ला दे बारे च गल करे दे फुल्ला दी खेती दे बारे च गल करे दे, तो किसान भाई जो इन्हां गल्लां दा जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पहले सारे ते पहले तो तेना जो पता होना चाहिए कि जालू भी हाँ दी फुल्ला दी खेती तैयार हो जानी तो हाँ कुछ ही जाए कि तीस जो बेची सकते ना।
0: बिल्कुल, हाँ
1: जी, कि फुल्ला दी खेती जालू भी तैयार हो जाती तो एकदम तेना जो जेड़ा बाजार जेड़ा से जरूर चाहिए होंगे, तो सारे ते पहले तो तेना जो ये पता ये जेड़ा से पूरा सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जालू भी हाँ हाँ दी फुल्ला दी जेड़ी फसल है सह तैयार हो जानी है, जालू भी हाँ फुल तोड़ने तो सह कुछ हाँ बेची सकते ना। इस गल्ला दा ध्यान रखना चाहिए, कने सोगी सोगी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिहा जमीन च हाँ फुल्ला दी खेती करा दे सह खेती जड़े सह जड़ी जमीन है सह फुल्ला दी कुण दे फुल्ला दी किस्मा वास्ते उपयुक्त है।
0: हाँ,
1: तो फिर हड्डी फिरी के गल दिखा किसान मित्र जी सह ही आई जाती कि हाँ दे किसान भाइयों जो मिट्टिया की जाँच भी जड़ी से जरूर करवाई लेना चाहिए।
0: हाँ, कहना दिखा इसते सोगी अहाँ दे ब्लॉक स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रां पर फल उद्यान विभाग दे अधिकारी बैठे होने ने,
1: हाँ जी,
0: तेना कन्ने तो हाँ संपर्क बना ते तो जाई के पूरा जिसी हाँ बोलते हैं एक प्रशिक्षण तेना जो बोला कि हाँ जो भी जड़ा सही दे बारे च प्रशिक्षण चाहिदा है
1: जी जी,
0: तेना ना सलाह करा ते तू अपनी अर्जी दिया। कन्ने इस व्यवसाय जो चलाने ताइया सरकार द्वारा जड़ा सा कुछ भी अगर कोई सहायता राशि जियां मिलती है तो उदे बारे च भी पता करा। कन्ने इसते सोगी जड़े अहां दे युवा अहां दे किसान भैणां अहां दे किसान साथी इस व्यवसाय जो करा करदे हन तो उन्हां कन्ने भी तुहां मिला उन्हां दे ओह तो जाई के भी दिखा किसे कियां कियां करा करदे हन। कन्ने फिर कुछ ज्यादा ये नहीं है, कन्ने तुहां भी अच्छा कम काज जड़ा सा इस खेती च करी पाना।
1: बिल्कुल, कने फुल्ला दी खेती दा एक फायदा ये भी है कि अहां दे किसान भैणा किसान भाई जड़े से फुल्ला दी माला बनाई के बेची सकदे फुल्ला जो बेची सकदे, कने इस दे सोगी सोगी जड़े फुल होंदे तिना दी अगरबत्तियां तिना दे जड़े से अगरबत्तियां बनाई के भी बेची सकदे, कने इस दे सोगी सोगी गुलाब दा जड़ा फुल होंदे ते इस दे गुलाब जल बनाई के भी जड़े से
0: मते सारे जितने ने भी शैम्पू होई गए यहाँ जो पाउडर होई गए क्रीमा होई मती जगह जी से फूलों की मांग है ना। गुलाब जल की गल करिए देखा कितना महंगा गुलाब जल है जी कोई साबुन जी खुशबू आले साबुन होई गए शैम्पू होई गए हाँ तो कुल मिलाई के हाँ ये नहीं बोल सकते कि फूल जो चढ़ाने जो या ब्याह कार्ज जो सजाने वास्ते ही कम आने मते सारे इन्हां दे उत्पाद भी तैयार होई के आहां तो हाँ खरीदा करदे न।
1: बिल्कुल कने जालू भी आहां दे किसान भाई किसान पैना उत्पाद इन्हां फुल्लां दे उत्पाद बनाई के बेचदे तां तिन्हां जो ज्यादा मुनाफा जिहड़ा से मिलदा है।
0: हाँ जी
1: ता इन्हां गल्लां दे सोगी दिखा किसान मित्र जी फ्री ते अपने किसान भाइयां दा मनोरंजन करना है कने सुनाना ते इन्हां जो एक प्यारा दिया लोक गीत
0: जी।

0: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन नोईयां ते नोईयां जानकारियां अहां तुहां तक पुजान। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत महिला किसान अहां दे टियाले पर आयो हन, करदन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा।
1: जी मेरा नाम अनीता देवी है।
0: कने घर कुदन तुहां दे?
1: घर मेरे जमानाबाद सर।
0: कने ब्लॉक तुहां दा?
1: कांगड़ा सर।
0: कने तहसील भी कांगड़ा ना?
1: हां जी कांगड़ा।
0: अनीता जी खेतीबाड़ी करदे है ना?
1: खेतीबाड़ी करदे सर, खेती कर दे सर।
0: अच्छा।
1: हाँ जी
0: जी। किन्नी की जमीन है तो हाँ वाल?
1: है सर 5-6 एकड़।
0: अगर हाँ बिल्कुल जिस यहाँ बोलिए ना कि यहाँ वैज्ञानिक तरीके करने अगर हाँ खेती करना ना,
1: हाँ जी।
0: सब 5-6 एकड़ जमीन बड़ी भारी होंगी।
1: हाँ जी सर जी।
0: जी क्या क्या लगान दे 5 एकड़ चे तो हाँ अनीता जी?
1: सर कनक लगाई हो हाँ।
0: हाँ जी।
1: फिर गोभी लगाई है सर, पालक लगाया था, धनिया लगाया, सब कुछ लगान दे।
0: अच्छा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सारा लगान दे, मिश्रित खेती कर दे ना?
1: हाँ जी।
0: गल कर दे सबसे पहले अनीता जी बीज दी, ता बीज वगैरह कुत्ते लांदे तो हां? घरे दे बीज बांदे या फिर ब्लॉक ते लांदे?
1: ब्लॉक ते भी ले लांदे सर, कने थोड़ा मतलब अपना भी रखी लेंदे कुछ बीज।
0: अच्छा, घरे दा होई है ना?
1: हां जी।
0: जियां कणक वगैरह होई है या जियां धान वगैरह दा, ए घरे दा बीज होंदा?
1: घरे दा भी रखदे सर।
0: अच्छा। हां जी। इस बारी एक दे ही है कणका दी फसल?
1: फसल ठीक है सर।
0: तुहां दा जेड़ा ओ इलाका है जमानाबाद, ओथे कियां करदे सिंचाई? तुहां फसलां जो कने जमीन अपनी कियां सेड़दे?
1: जमानाबाद तो बड़ा पानी है सर।
0: अच्छा।
1: हां जी, कोई पानी की कमी नहीं है सर।
0: कुल लगदी?
1: कुल लगदी सर।
0: अच्छा।
1: जेड़ी मटोरे ते सीधी कुल आंदी ना?
0: हां जी।
1: ताहंदे खेतां च लगदी।
0: तो इस विच ता खूब पानी आंदा होणा ना?
1: हां जी, खूब पानी है सर।
0: जलू दिल किता तालू जाने की छड़ी लिया ना?
1: हां जी सर।
0: अच्छा, तो जियां जलू पानी वगैरह लगाना हो खेतां च ता आपू ही लगा लेंदे या फिर कुछ जियां ग्राएं विच कोहली वगैरह भी होंदे?
1: कोहली वगैरह भी होंदे सर, तियां मतलब बारियां आउंदियां ना?
0: हां जी हां।
1: तियां भी आउंदियां है कने मतलब इयां भी लगाई लेंदे आ।
0: कने ऐसा भी होंदा ना जियां सेड़ चलो लगना ता जियां पहले आहां दी जमीन सिजणी फिर तोहां दी फिर
1: होणा
0: दी है ना? तो तियां अज तोहां ठीक ला करदे कि बारियां दे हिसाबे करना, जियां ऐसा तो नहीं होणा कि जियां इक दी सिजदी रहा तो इस विच लंघी की केबरी पानी गां जांदा ना? तो जियां अभी हिसाब किताब बनाया होंदा होणा ना, फिर एक ही जनी जमीन तो पूरी दलदल ही बनी आनी है ना?
1: हां जी सर।
0: इन्हें बाहने मौका नहीं मिलना ना?
1: अच्छा,
0: ये सारा काम काज जेड़ा सर कोहली दिखदे होने ना?
1: कोहली दिखदे सर।
0: ये किया जमीन सेड़नी है, कुना ही पानी देना ना?
1: हां जी।
0: तो जेड़े कोहली है ना उना जो क्या दिंदे लोग मिली गए, दिया कुछ पैसे वगैरह लेंदे है या?
1: तीने दिंदे हां सर, तिया कणक होई।
0: हां जी।
1: मतलब कणक लगांदे है, धान भी लेंदे, पैसे तो नहीं दिंदे पण कणक ही धान।
0: इसके बाद गल करदे हन जिया खाद वगैरह दी, तुहां शुरू च जिक्र कीता हा कि तुहां प्राकृतिक खेती कर दे ना?
1: हाँ जी।
0: कितने साल हुई है प्राकृतिक विधि करना खेती कर दे?
1: ये सर मिंजो 3 साल हुई है।
0: पहला यानी कि यूरिया वगैरह केमिकल पांदे है ना?
1: हाँ जी।
0: तो हाँ जो कुदू ते ए प्रेरणा मिली कि उन जड़ा सा प्राकृतिक करिए खेती?
1: सर मैं ब्लॉक ने जुड़ी, कहने मैं एक पशु सखी है, तिथु ते थ्रू मेरी ट्रेनिंग हुई बिलासपुर, तिथु ते मैं प्राकृतिक खेती दे बारे च सिखिया, कहने इथो आई के भी यहाँ घर आई के काम किता ओदे बारे च।
0: अच्छा।
1: हाँ जी।
0: तो हाँ जो कदे लगदा हुण कि प्राकृतिक जल खेती तो हाँ कर दे उत्पादन अच्छा मिलना करता है?
1: अच्छा मिला सर।
0: अनीता जी इसके बाद गल करते हैं जी, तुहां दस्या ना कि तुहां बिलासपुर जेड़ा सा ट्रेनिंग कीती है।
1: हां जी।
0: जी तुहां जिक्र कीता कि तुहां एक पशु सखी भी है ना?
1: हां जी पशु सखी सर।
0: क्या काम होता है इन्हां दा, क्या करदे तुहां?
1: हां करदे सर, पशु सखी दे बारे च प्राकृतिक खेती दे बारे च सिखिया है, उत्थों पशु सखी च दी है मतलब कुछ पशु में बीमारी हो जांदी है।
0: हां जी।
1: ते दे बारे च हां ट्रेनिंग देंदे वे मतलब मैं सिखिया ही उस दे बारे च भी हां काम करदे।
0: अच्छा।
1: क्या बीमारी कने क्या नहीं है, सह लोग यहाँ दस दे इन करा भी।
0: हाँ जी।
1: हाँ जी।
0: जी तो हाँ जिक्र किया है ना कि तुहां प्राकृतिक खेती करा कर दे, इस ताइया जी करे माल बच्छू क्या क्या पालिया तुहां?
1: हाँ जी हाँ पालिया, बकरियां पालिया हाँ, गाय रखी हो।
0: गा दूध दिंदी?
1: हाँ जी।
0: किन्ना के दूध हो जांदा करे?
1: दूध हो जांदा है, ओ दूध डंगा दा हो जांदा 5-6 किलो।
0: अच्छा।
1: हाँ जी।
0: तो थोड़ा बहुत बेची भी दिंदे होने?
1: बेचते सर।
0: घर बिकी जांदा या फिर कांगड़ा जांदे देना?
1: हां दा घर बिकी जांदा।
0: क्या भा दूध बिकी जांदा जमानाबाद गाय दा?
1: गाय का दूध है 50 रुपये किलो।
0: अच्छा।
1: हाँ जी।
0: दिखा अनीता जी अगर जिया ग्राएं बिच अगर 50 रुपये किलो दूध बिकी आ करदा ना?
1: हाँ जी।
0: तो दिखा ग्राएं बिच एक आपसी मेल जोल भावना भी होंदी है ना?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: कहना दूए पे हाँ अगर हाँ सोचिए ता खाल महंगी हो कर दी, का पट्ठे महंगे हो ये।
1: हाँ जी
0: जी। लेकिन फिर भी यहाँ दे पशु पालक भाई जेड़े सा प्रवाह नहीं मारदे, चलो अगर ग्राएं दी गल है 50 भी ठीक है, अगर गाय का दूध बिकी आदा ना?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: इसके अलावा जी छा वगैरह नहीं छोड़दे?
1: छा वगैरह कढ़दे हाँ, पी खाने कढ़ी लेंदे, दही जमांदे,
0: घ्यो तो भी बेचते होने फिर देसी?
1: घ्यो बेचते सर हाँ 900 रुपये किलो वाला है।
0: बकरियां दसियां तो हाँ गिननी है? बकरियां पालियां?
1: बकरियां पालियां हाँ 4।
0: शुरू से 4 जिन्हें की ज्यादा नहीं रख रखी
1: ना? ना ज्यादा ही है पहले सर।
0: तिन्हें चुगांदे की घर बन्नी हट दे?
1: तिन्हें कर रहे हैं यहाँ का ਪੱਟੀਆਂ ਚ ਲਗਾਏ ਆ।
0: ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ?
1: ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ।
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ
0: ਬੱਕਰੀਆਂ
1: ਦਾ ਨੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੀਣਾ ਤੇ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ
1: ਤੀਆਂ ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ।
0: ਹਾਂਜੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ
1: ਤਿਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਿਨੇ ਦੇਂਦੇ ਆ।
0: ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਤੋਪੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ?
1: ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰ।
0: ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ 22 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ 22 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ 22 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
1: ਕੱਟਦੀ।
0: ਹਾਂਜੀ।

0: जी ता हाँ सुनिया मिली के ये लोकगीत कने चंचलो जी दिखा भी लोकगीत जो सुनी के कितना मन जिसी यहाँ बोलते हैं ना मने चैन मिलती है कने अहाँ जो अपनी मिट्टी की खुशबू लोकगीतों के बीच आती है।
1: हां जी, तो हां बिल्कुल ठीक बोलिया। कन्ने लोग गीता कन्ने हां दा तनाव भी कटदा, कन्ने किसान भाइयों दी दिने दी थकावट जड़ी है सह भी थोड़ी मती जड़ी से घटी आंदी है।
0: जी इस ते बाद हाँ गल करनी है उन का मौसम दी है ना,
1: जी
0: ता चंचलो जी दिखा अहाँ दे जियाँ हाँ पहले भी गल की ही कहना किसान साथी जड़े जितनी कि ना अपनी कमे की रफ्तार खेती विच पकड़ी हो है ना
1: हां जी
0: उतना ही जल दिखा कुती जल वर्खा हो या दे आसार बनी आ कर दे जे अज भी दिखा उपली क्षेत्रा विच जड़ी से काफ़ी वर्खा हुई है ना।
1: हुई। हां जी
0: हाँ तो कई बार तो क्या होंगे कि जल वहाँ के किसान साथियाँ अपनी पूरी कणक की फसल कठेरी कठोरी के तेना या बढ़ी के जल तैयार की तह तो बरखा पी जाती है ना, तां ते सै सोचे होंगे कि हाँ थ्रैशिंग करते हैं कई बार जरा सा हाँ जो मशीन भी तल पौंदियाँ नहीं ना मिली जाए
1: नहीं मिलती। हां
0: थोड़ा बहुत
1: जी
0: निहालना ही पौंदा ना,
1: जी
0: ता इस घड़ी जल अहाँ के किसान साथी का जल कितिया कराया काम थोड़ा खराब हो जाता ना ना
1: काम
0: तो
1: बदी
0: थोड़ा
1: आंदा ना।
0: काम थोड़ा लंबा हो
1: हां
0: जाता,
1: जी
0: लेकिन फिर ते किसान साथी जड़े से नी घबराते कने फिर ते जड़ा से थोड़ा लंबा सही क्या करना हूँ दिखा अपनी 6 महीने की फसल है इकट्ठी तो करनी है ना।
1: हां जी कने प्रकृति पर हां दा कोई जोर भी नहीं है ना।
0: हाँ
1: कने इस दे सोगी दिखा हां दे वैसे तो किसान भाई समझदार हैं कि तेनों पता है कि दिखा मौसम खराब हो दा तो इस हिसाबे ने अपने खेती बाड़ी दे काम कार कर दे ना। पर तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले कि कई बार हाँ बिल्कुल तैयारी की थी उन्दी पर एकदम जड़ी से बरखा पे आंदी।
0: हाँ तो मौसम जो भी जड़ा सा दिखी के उस हिसाबे जियाँ कि अपनी फसल जियाँ अजकल तो हर एक किसान साथियाँ दिखा लंबे लंबे जड़े सा तरपाल सारे रखे हो ना
1: रखे हां जी
0: तां ढेर लगा दे कने तां झट ढक्की मारा दे कने अजकल तो कोई जियाँ बोलिए ना हाँ तो किसान कुछ भी क्षेत्र में घट नहीं है।
1: जी
0: हाँ किसान जागरूक है पढ़िया लिखिया कने वैज्ञानिक दिया सलाह कने किसान चला करते हैं कने अच्छा मुनाफा अपनी खेती ते लिया करते
1: लिया
0: हैं
1: कर दे जी।
0: जी। तो चलते चलते चंचलो जी सुनते हैं एक और लोक गीत।
1: हाँ जी

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कने कार्यक्रम का समय इतों ही संपन्न होने जो है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह कने तकनीकी सहयोग आए दिता सुरेंद्र कपूर ने
1: कने हुण हां दुनिया दी अनुमति।
0: अच्छा जी।

अभी आप सुन रहे थे अजय सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए 1426 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, 4 मई को होगी जांच। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अपनी उपलब्धियों के आधार पर शहरी निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार ने नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए शुरू किया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। और विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने रामपुर के खनेरी अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं के टीबी संक्रमित होने पर जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। इन चुनावों के लिए प्रदेश के 10 जिलों में कुल 1426 उम्मीदवारों के नामांकन भरे गए हैं। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 269, मंडी जिला में 214, शिमला जिला में 167, जबकि सोलन जिला में 158 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। शहरी निकायों के लिए मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। सिरमौर जिला में नगर निकाय चुनाव के लिए 92 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। नाहन नगर परिषद के लिए कुल 31, पांवटा साहिब नगर परिषद के लिए 40, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ के लिए 21 नामांकन दर्ज हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि 4 मई को नामांकन की जांच की जाएगी, जबकि 6 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
1: जिला सिरमौर में टोटल हमारे 92 नॉमिनेशंस हैं, जो 3 हमारे यूएलबी सीट्स हैं वहाँ पे फाइल हुए हैं। इसमें जो हमारा 13 वार्ड है एमसी नाहन के, 13 है पौंटा के और 7 वार्ड एनपी राज। जैसे आज अंतिम तारीख थी नॉमिनेशन फाइल होने की और मंडे को यानी 4 मई को स्क्रूटिनी की जाएगी। स्क्रूटिनी में हमें पता चल जाएगा जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं किसके कागज ठीक है किसके ठीक नहीं है। उसके बाद विड्रॉल की तिथि हमारी 6 मई की है, तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना जो नामांकन है उसको विड्रॉ करना है वो 3 बजे से पहले अपना नामांकन विड्रॉ कर सकते।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर वोट करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीत कराएंगे।
2: जो हमारे नगर निगम हैं, जिसमें खास रूप से मंडी है, पालमपुर है, धर्मशाला है और सोलन है, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और प्रभारियों को हर जगहों पे नियुक्त किया गया है, तो निश्चित तौर से ओवरऑल जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो एक फॉर्मेट पूरे प्रदेश में रहा है, हम उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और पूरी मजबूती से इन चुनावों को लड़ा जाएगा।
0: विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत सड़कों की टारिंग के कार्य रुकने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर विकास कार्य जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। नाहन में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी स्थानों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता चुनावी वायदे पूरा ना करने वाली कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से तंग आ चुकी है और इन चुनावों में सरकार को जवाब देगी।
3: 4 कॉरपोरेशंस, 22 नगर पालिकाएं और 25 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि 3.5 साल में जिस कांग्रेस की सरकार ने जनता का जीना दूभर किया है उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
0: केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र में एक चलती गाड़ी पर आज पेड़ गिरने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के रामपुर खनेरी नर्सिंग संस्थान व अस्पताल में 20% नर्सिंग छात्राओं के टीबी संक्रमित होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन छात्राओं के टीबी संक्रमित होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम ना उठाया जाना अत्यंत शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दशकों से चल रही इस लड़ाई में जहां केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भरपूर सहयोग दे रही है, वहीं प्रदेश स्तर पर इस मामले में भारी लापरवाही सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन अभियान एक स्वस्थ व बेहतर कल का अभियान है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नगर निगमों, पंचायतों और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सभी को पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी है और ऐसे में पार्टी मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे आना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रसून जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उनकी पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नव निर्माण में डॉक्टर परमार का उल्लेखनीय योगदान है और हिमाचल कभी भी उनके इस ऋण को नहीं चुका सकता। विनय कुमार ने कहा कि डॉक्टर परमार के अथक प्रयासों से ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा भी इस दौरान मौजूद रहे। सिरमौर कल्याण मंच सोलन ने भी डॉक्टर परमार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिलासपुर जिला में गोविंद सागर झील और कोल डैम में जल गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही

0: भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश भर में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा कल 3 मई को ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अलावा संबंधित जिला प्रशासन की ओर से भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। किन्नौर जिला में पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से निपटाने के लिए रिकांगपियो में नियंत्रण कक्ष व मीडिया सेल स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि ये नियंत्रण कक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों की सतत निगरानी करेगा। उधर हमीरपुर जिला में पंचायत चुनावों के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए 1426 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, 4 मई को होगी जांच। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अपनी उपलब्धियों के आधार पर शहरी निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार ने नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए शुरू किया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने रामपुर के खनेरी अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं के टीबी संक्रमित होने पर जताई चिंता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। देश का सुनिए

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।
3: मेरे

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं गुलाम अली की गाई ये गजल।

दिलेर मेहंदी और साथियों के गाए इसी गीत के साथ आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस बस यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत। कर्मा फिल्म से ये देशभक्ति गीत मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति व साथियों का गाया हुआ।

0: पूर्व और पश्चिम में इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ों में। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, फिल्म बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या, और 9 News@9 रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त, और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
3: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

0: जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन

0: आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लव्स कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी. दैट वॉज माई बैरोमीटर. आई लर्नड लैंग्वेज, आई लर्नड डिक्शन
1: कल्चर
0: फ्रॉम कल्चर. सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया. जो युवा पीढ़ी है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाएं और बाखूबी ले जाएं. ये बहुत जरूरी बात है.
2: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे, तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो
0: दिली दिल बहुत खुश होते कि ये छप गई है.
3: आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज़्म या गज़ल कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ आप हमें पहले सुझाता जी.
2: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये है वो पहली बारिश. जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश, भीगी भीगी बोराई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से पलकें सहलाएं, बरखा भीगी सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते, आ जाएं अपने साईं जी, लंबी पलके प्यारी आंखें सावर चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली हाथ में चिमटा, ताल से ताल मिलाएं. इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर नहाते हैं, खेलते हैं कूदते, ये साईं जी कौन है? मुझे लगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं जी के बारे में बात कर रहे हैं. तो मुझे पता चला कि पुराने ज़माने में जब बारिश होती थी तो एक उनको कहते थे मलंग, वो आते थे और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल, हाथ में चिमटा, यहाँ रस्सियाँ, कमर में रस्सियाँ, और वो नाचते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे. तो मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगी, और जो है नहीं अब ना,
0: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है, उसने कुछ मुझसे कहा.
3: बिल्कुल सीमा जी स्वागत है.
0: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे,
3: क्या बात है?
0: नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे,
3: क्या बात है?
0: अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे, दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे,
3: क्या
0: रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे, ओस के कांपते मोती थामे, ओस के कांपते मोती थामे, बर्फ ही दस्ते दुआ हो जैसे,
3: क्या बात है?
0: वही मानूस पुराना बरगद, वही मानूस पुराना बरगद, कोई कुछ सोच रहा हो जैसे,
3: क्या बात है? बहुत खूबसूरत है. बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप यहाँ आए, आपने हमें, हमारे सुनने वालों को कम से कम के नैयर साहब से कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया. बहुत शुक्रिया आप
2: सबका, बहुत शुक्रिया.
4: उसने कुछ मुझसे कहा, नैयर साहब की खुद की आवाज जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया, और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है, सबके लिए, हमेशा के लिए. साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहें, और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है. नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान A.V. वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कला निधि मैसूर टी चौड़ैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण H.K. नरसिम्हामूर्ति तथा विदुषी H.N. राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री T.K. श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान H.N. भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है। अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की ए ग्रेड कलाकार हैं, और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित M.S. सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of National Program of Music, we bring you violin duet recital by Sindhu Suchetan and H.M. Smita. Born into a distinguished musical lineage, the sisters are the granddaughters of the legendary violinist Vidwan A.V. Venkata Narayana, a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi Mysore T. Chaudhaya. This rich inheritance laid a strong foundation, but it is their relentless pursuit of perfection that has shaped them into the accomplished artists they are today. Under the guidance of eminent gurus like Gana Kalabhushana Vidwan H.K. Narasimhamurthy and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Sri T.K. Srinivasan and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashwani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards, including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purundara Award, and the distinguished M.S. Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace, innovation and unwavering dedication.
0: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं B.S. प्रशांत, घटम पर G. ओंकार राव.
1: In tonight's broadcast, they are accompanied on mridangam by B.S. Prashant, ghatam by G. Omkar Rao.
0: सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पचनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इरना पाई के साथ कर रही हैं। यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद इरना पाई, अ कंपोजिशन ऑफ पचनम सुब्रमण्या अय्यर इन राग तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग देयर कॉन्सर्ट, दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदि ताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, Sindhu Suchetan and H.M. Smitha will now present Lalite, a composition of Saint Thyagaraja in Bhairavi Raga set to Adi Taal.

0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by B.S. Prashant and on Ghatam by G. Omkar Rao.
0: Sindhu Suchetan और H.M. Smita अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: Sindhu Suchetan and H.M. Smita will conclude their violin duet recital with Tilana in Raag Desh, a composition of विद्वान लालगुड़ी जयरामन।

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना

0: जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam, and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala, and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly Constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly Constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamala Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania on being appointed as full-time members of Niti Aayog. In a social media post, Mr. Modi said their rich experience and deep understanding of various issues will greatly strengthen policy making. He expressed confidence that their contributions will help drive innovation and growth across sectors. The Prime Minister wished them a very productive and impactful tenure ahead. Communications Minister Jyotiraditya Sindhya today launched the cell broadcast system CBS to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. A nationwide test of the system was successfully conducted today, during which emergency alert messages were broadcast to mobile phones. Speaking at the launch in New Delhi, the minister called it a transformative step in India's disaster management framework, reflecting the shift from a reactive to a proactive approach in safeguarding citizens. The Ministry of Information and Broadcasting has appointed noted lyricist, writer and communication expert Prasoon Joshi as the chairman of Prasar Bharati, India's public service broadcaster. Mr. Joshi is a distinguished creative professional with wide-ranging contributions across literature, advertising, cinema and public communication. The Board of Control for Cricket in India today announced the Indian women's squad for the ICC Women's T20 World Cup 2026. Harmanpreet Kaur will lead the side with Smriti Mandhana named as vice president. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।